0: ठीक है ना। मने उस ब्रह्म की चर्या करने वाला जो है, ब्रह्म का आचरण करने वाला जो है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहां वेद। तो वेद का आचरण करने वाला है, वेद की अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला है, उसको क्या कहेंगे? कहा वो है ब्रह्मचारी। अब उसके अंतर्गत जितने धर्म ब्रह्मचारी के हैं वो सब आ जाएंगे। तो वेद क्या निर्देश देता है, वेद की क्या अनुज्ञा है, तो वेद में आस्था रखते हुए, वेद की अनुज्ञा को स्वीकार करते हुए यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? तो कहा ब्रह्मचारी है। केवल एक अवस्था विशेष को ही नहीं, उस अवस्था विशेष में उसका विधान किया गया कि उस समय बुद्धि जो है ग्राहक शक्ति अच्छी होती, सहसवे अभ्यस्त विद्या नाम, इसलिए वो किया गया। लेकिन ब्रह्मचारी शब्द का यहां तात्पर्य सीधा है कि जो वास्तव में उस वेद की अनुज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाला है, वेद की अनुज्ञा को मानने वाला है वह ब्रह्मचारी। तो ऐसे वह ब्रह्मचारी मन वे वेद की अनुज्ञा मान करके उस वेद के अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हैं, ऐसे उनको है आयंतु माम मेरे लिए लाओ। अब जब वो मेरे पास आएंगे तो आप जानते हो संगत से ही क्या होता, गुड़ भी होते हैं और संगत से ही, और ऐसे जब आएंगे तो फिर हमें क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो है वही तो देंगे, उनके पास यदि होगा नहीं वो कहां से दे देंगे। तो वो वेद की अनुज्ञा क्या है और वेद का उस अनुज्ञा के द्वारा प्रेरणा कहां है, वो भी हमें प्राप्त होगा। और तद अनुकूल जैसे वो आचरण करते हैं तो वैसा ही आचरण हमारा भी बने। यदि आचरण श्रेष्ठ तब तदेव तरुण, तो ये जब स्थिति होगी, इसलिए यहां संकेत किया ऐसे उन ब्रह्मचारियों को लिए को है मेरे पास लाओ, ये संकेत किया। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब वो ब्रह्मचारी आए तो लेकिन आकर के वो छल कपट रखें, वो मनी ईर्षा रखें और अपनी वस्तु हमको न देना चाहें, छिपा के रखना चाहें, तो उनसे क्या लाभ होगा। इसलिए कहा कि विमायंतु है, मने वो ब्रह्मचारी आए लेकिन कपट न रखें, कपट से रहित होकर के मेरे पास आए, अर्थात मेरे प्रति कोई छिपाव न रखें, ऐसा संकेत किया। और ऐसा संकेत करते हुए आगे संकेत करते हैं का प्रमायंतु ब्रह्मचारिणः। प्रमा माने माने प्रकृष्ट ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान। अब जब इस प्रकार का संयोग बनेगा तब क्या मिलेगा, तब जो यथार्थ ज्ञान है, परमात्मक ज्ञान है, वह ज्ञान तब होगा, तब जो है उनके द्वारा क्या है, मुझे प्रमा जो ज्ञान है उस प्रमा ज्ञान वाला मुझे बनाओ या वो मेरे लिए लाओ, अर्थात उसकी प्राप्ति कराओ। तो इसलिए संकेत किया प्रमायंतु ब्रह्मचारिणः, वह ब्रह्मचारी जो है स्वयं भी प्रमा से युक्त हो और मुझे भी वह प्रमा ज्ञान कराएं। ये संकेत करते हुए फिर अंत में और कह दिया, तो वो पहली ही सीढ़ी लेकिन उसे अंत में फिर दोहरा रहे, वो क्या कहा, दमायंतु ब्रह्मचारिणः है स्वाहा समायंतु ब्रह्मचारिणः। मणि वो ब्रह्मचारियों के लिए भी कह दिया, वो ब्रह्मचारी हमारे लिए, दोनों ही तरफ से संकेत करता मैंने क्या करें। तो दम शब्द का अर्थ आप जानते हो इंद्री निग्रह, और सम शब्द का जो है मनोनिग्रह। तो जब तक इंद्रिय संयम और मन का संयम नहीं होगा तब तक ये जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना भी सुचारू रूप से होगी नहीं, और उस प्रार्थना गत जो है तात्पर्य है वो भी जीवन में नहीं आए। इसलिए संकेत कर दिया है अंत में कि क्या होना चाहिए, कि हमारे जीवन में दम होना चाहिए, हमारे जीवन में सम होना चाहिए, माने इंद्रियों का संयम होना चाहिए और मन का भी संयम होना चाहिए। यद्यपि ऊपर ये संयम ही बतलाया, ऊपर जो जो कहा है वो क्या है, संयम के अंतर्गत। संयम का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं, किंतु आंख के द्वारा एक विवेक प्राप्त करना, क्या उपादेय है और क्या है। उपादेय जो है उसको जब आंख से आपने परीक्षण कर लिया तो मन जो है उसी उपादेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो, और जो अनुपादेय है उसका त्याग करे, यही इंद्रिय और मन का संयम। ऐसे ही शब्द कान के द्वारा सुना तो उसमें उपादेयता और हेता का ज्ञान करते हुए और उपादेय को मन ग्रहण करे तो इंद्रियों का ये संयम है, इसी का दम और सम करके नाम कह देते। माने तो इंद्रियां जो है उस हे की तरफ न जाएं और मन भी कभी उसका चिंतन न करे तो हो गया सम और दम। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, ऐसी चर्चा आगे चर्चा कल।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om. ஸ்ரீ சிவமகா புராணத்துடைய தொடர்ச்சி வித்யேஸ்வர சம்ஹிதா 18வது அத்தியாயம் இப்போ ஆரம்பம். ஓம் அத அஷ்டாதசோத்யாய பந்த மோக்ஷஸ்வரூபம் சிவலிங்க மாஹாத்மியம் ச ரிஷய ஊச்சு பந்த மோக்ஷஸ்வரூபம் ஹி ப்ரூஹி சர்வார்த்த வித்தம சூத உவாச பந்தம் மோக்ஷம் ததோபாயம் வக்ஷ்யேஹம் சுணுதாதராத் பிரகிருத்யாத்யஷ்டபந்தேன பத்தோ ஜீவஸ்ஸ உச்யதே பிரகிருத்யாத்யஷ்டபந்தேன நிர்முக்தோ முக்த உச்யதே பிரகிருத்யாதிவசீகாரோ மோக்ஷ இத்யுச்யதே ஸ்வதஹ பத்த ஜீவஸ்த நிர்முக்தோ முக்த ஜீவஸ்ஸ கத்யதே பிரகிருத்யக்ரே ததோ புத்திரஹங்காரோ குணாத்மகஹ பஞ்சதன்மாத்ரமித்யேத பிரகிருத்யாத்யஷ்டகம் விதுஹ பிரகிருத்யாத்யஷ்டஜோ தேஹோ தேஹஜம் கர்ம உச்யதே புனச்ச கர்மஜோ தேஹோ ஜன்ம கர்ம புனப்புன சரீரம் த்ரிவிதம் ஞேயம் ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் ச காரணம் ஸ்தூலம் வியாபாரதம் ப்ரோக்தம் சூக்ஷ்மம் இந்திரிய போகதம் காரணம் த்வாத்ம போகார்த்தம் ஜீவ கர்மானுரூபத சுகம் துக்கம் புண்ய பாபை கர்மபிஹி ஃபலமஷ்ணுதே தஸ்மாபி கர்மரஜ்வாஹி பத்தோ ஜீவ புனப்புன சரீரத்ரய கர்மபியாம் சக்கரவத் பிராம்யதே சதா சக்கிரபிரமண நிவத்தியர்த்தம் சக்கரகர்த்தாரமீடயேத் பிரகிருத்யாதி மகாசக்கரம் பிரகிருதே பரத சிவ சக்கரகர்த்தா மகேஷோ ஹி பிரகிருதே பரதோ யத பிபதி வாதவதமதி ஜீவன் பாலோஜலம் யதா சிவஸ்ததா பிரகிருத்யாதி வசீகிருத்யாதிதிஷ்டதி சர்வம் வசீகிருதம் யஸ்மாத் தஸ்மாத் சிவ இதி ஸ்மிருத சிவ ஏவ ஹி சர்வஜ்ஞ பரிபூர்ணஶ்ச நிஸ்பிருஹ சர்வஜ்ஞதா திருப்திரநாதிபோத ஸ்வதந்திரதா நித்யவலுப்த சக்தி அனந்தசக்திச்ச மகேஸ்வரஸ்ய யன்மானசைஸ்வர்யமவைதி வேத அத சிவப்ரஸாதேன ப்ரகிருத்யாதிவசம் பவேத் சிவப்ரஸாதலாபார்த்தம் சிவமேவ ப்ரபூஜயேத் நிஸ்ப்ருஹஸ்ய ச பூர்ணஸ்ய தஸ்ய பூஜா கதம் பவேத் சிவோத்தேசகிருதம் கர்ம ப்ரஸாதஜனகம் பவேத் லிங்கேதேரே பக்தஜனே சிவமுத்திஷ்ய பூஜயேத் காயேன மனசா வாசா தனேனாபி ப்ரபூஜயேத் புஜயாது மகேஷோ ஹி ப்ரகிருத பரம சிவ பிரசாதம் குருதே சத்யம் பூஜகஸ்ய விதேசத சிவப்ரசாதாத் கர்மாத்யம் க்ரமேண சுவசம் பவேத் கர்மாரப்ய ப்ரகிருத்யந்தம் யதா சர்வம் வசம் பவேத் ததா முக்த இதி ப்ரோக்த ஸ்வாத்மா ராமோ விராஜதே பிரசாதாத் பரமேஷஸ்ய கர்ம தேஹோ யதா வசஹ ததா வை சிவலோகே து வாச சாலோக்யமுச்யதே சாமீபியம் யாந்தி சாம்பஸ்ய தன்மாத்ரே ச வசம் கதே ததாது சிவசாயுஜ்யம் ஆயுதாத்யை க்ரயாதிபிஹி மகாப்ரசாத லாபே ச புத்திஷ்சாபி வசா பவேத் புத்திஸ்து காரியம் ப்ரகிருதே தத் சார்ஷ்டிர் இதி கத்யதே புனர் மகாப்ரசாதேன ப்ரகிருதிர் வசமேஷ்யதி சிவஸ்ய மானசைஸ்வர்யம் ததா யத்னம் பவிஷ்யதி சார்வஜ்ஞாத்யம் சிவைஸ்வர்யம் லப்த்வா ஸ்வாத்மனி ராஜதே தத் சாயுஜ்யமிதி ப்ராஹுர் வேதாகம பராயணாஹ ஏவம் க்ரமேண முக்தி ஸ்யாத் லிங்காதௌ பூஜயா ஸ்வத அத சிவ ப்ரசாதார்த்தம் க்ரியாதி பூஜயே சிவம் சிவ க்ரியா சிவ தப சிவ மந்திர ஜப ஸ்வதா சிவ ஜ்ஞானம் சிவ தியானம் உத்தரோத்தரம் அப்யசேத் ஆசுதே ராமிருதே காலம் நயேத் வை சிவ சிந்தயா சத்யாதிபிச்ச குசுமைர் அர்ச்சயேத் சிவமேஷ்யதி ரிஷய ஊச்சு லிங்காதோ சிவ பூஜாயா விதானம் ப்ரூஹி சுவ்ரத சூத உவாச லிங்கானாம் ச க்ரமம் வக்ஷே யதாவத் சுணுத த்விஜாஹ ததேவ லிங்கம் பிரதமம் பிரணவம் சார்வகாமிகம் சூக்ஷ்ம பிரணவ ரூபம் ஹி சூக்ஷ்ம ரூபம் து நிஷ்கலம் ஸ்தூல லிங்கம் ஹி சகலம் தத் பஞ்சாட்சரமுச்யதே தயோ பூஜா தபஃ ப்ரோக்தம் சாக்ஷான் மோக்ஷப்ரதே உபே पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः भूविकारानि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमिवः स्वयंभूलिंगं प्रथमं बिन्दुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगं तु पञ्चमं देवर्षि तपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावराङ्गुरवद्भूमिम् उद्भिद्य व्यक्तये वदः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिदितं विदुः तल्लिङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादौ वा पृथिव्यां स्कण्डिरेऽपि वा स्वहस्ताल्लिखितं लिङ्गं शुद्धप्रणवमन्त्रकं यन्त्रलिङ्गं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिङ्गं स्थावरं जङ्गमं जयत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्य ते शम्भुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ताल्लिखिते यन्त्रे स्थावरात् आवकृत्रिमे आवाह्य पूजयेच्छम्भं षोडशैरुपचारकैः त्वमैश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत् देवैजर्षिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तल्लिङ्गं पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं जयत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदं यदूर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद्दुर्बलमनित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते लिङ्गं नाभिस्तदा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मिकं चरम् पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादिपौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः पाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालीगोधूमपौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यात् अणिमाद्यष्टसिद्धिदं सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं चरलिङ्गेषु रसलिङ्गं प्रकथ्यते रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिङ्गं क्षत्रियाणामहाराज्यप्रदं शुभं स्वर्णलिङ्गं तु वैश्यानामहाधनपतिस्त्वदं शिलालिङ्गं तु शूद्राणामहाशुद्धिकरं शुभं स्फाटिकं बाणलिङ्गं च सर्वेषां सर्वकामदं स्वीयाभावेऽन्यदीयं तु पूजायां न निषिध्यते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं सभर्तॄणां विशेषतः विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं विधवानां प्रवृत्तानां रथलिङ्गं विधिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणां सत्सर्वभोगदं प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजा समाचरेत् अभिषेकान्ते च नैवेद्यं शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिङ्गं सम्पुटेषु पृथग्गृहे करपूजा निवृत्तानां सुभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गं मे विधिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा विभूतित्रिविधा प्रोक्ता लोकवेदशिवाग्निभिः लोकागिजमधोभस्म द्रव्यशुद्ध्यर्थम् आवहेत् मृद्दारुलोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते श्वादिभिर्दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत् वेदाग्निजं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत् मन्त्रेण क्रियया जन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक् तद्भस्मधारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत् अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत् शिवाग्निर् इति सम्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्यश्वत्थपलाशान् वा वतारग्वद बिल्वकान् शिवाग्निना दहेच्छुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजं दर्भाग्नौ वा दहेत्काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत् दीप्त्यर्थं तत्तु सङ्ग्राह्यं मान्यते पूज्यतेऽपि च भस्मशब्दार्थ एवं हि शिवः पूर्वं तथा करोत् यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करम् यथा मनुष्या सत्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारा स्वदेहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेयप्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्चम् दग्भस्म स्वात्मन्यारोपयचिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारम् गृहीतवान् स्वरत्नम् स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके केशमाकाशसारेण वायुसारेण वै मुखम् हृदयम् चाग्निसारेण त्वपाम् सारेण वै कटिम् जानू चावनिसारेण तद्वत्सर्वम् तदङ्गकम् ब्रह्मविष्णोश्च रुद्राणाम् सार चैव त्रिपुण्ड्रकम् तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वम् अनेनैव वशीकृतम् तस्मादस्य वशीकर्ता नास्तीति स शिवस्मृतः यथा सर्वमृगाणाम् च हिंसको मृगसिंसहिंसकः अस्य हिंसामृगो नादि तस्मा सिंह इतीरितः शं नित्यम् सुखमानन्दम् इकारः पुरुषस्मृतः वकारः शक्तिरमृतम् मेलनम् शिव उच्यते तस्मादेवम् स्वमात्मानम् शिवम् कृत्वार्चयेत् शिवम् तस्मादुद्धूलनम् पूर्वम् त्रिपुण्ड्रम् धारयेत्परम् पूजाकाले हि सजलम् शुद्ध्यर्थम् निर्जलम् भवेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वा धनरोऽपि वा पूजा तम् सजलम् भस्म त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत् त्रिपुण्ड्रम् सजलम् भस्म धृत्वा पूजाम् करोति यः शिवपूजाफलम् साङ्गम् तस्यैः सुनिश्चितम् भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा यत्याश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तः शिवैक परमो यतः शिववृतैकनिष्ठस्य नाशौचम् न च सूतकम् ललाटेऽग्नेऽसितम् भस्म तिलकम् धारयेन्मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणम् गुणान्रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहम् सविकारान् राजसादीन् गुणान्रुन्धेर्यपोहति गुणादीतः परशिवो गुरुरूपम् समाश्रितः गुणत्रयम् व्यपोहाग्रे शिवम् बोधयतीरितः विश्वस्तानाम् तु शिष्याणाम् गुरुरित्यभिधीयते तस्माद् गुरुशरीरम् तु गुरुलिङ्गम् भवेद्बुधः गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणम् भवेत् हृदम् करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तम् यद्गुरुणा पूर्वम् शक्यम् वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते शरीराद्यर्थकम् सर्वम् गुरोर्गत्वा सुशिष्यकः अग्रपाकम् निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद्गुर्वनुज्ञया शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः जिह्वालिङ्गान्मन्त्रशुक्रम् कर्णयोनौ निषिच्य वै जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरम् पूजयेद्गुरुम् निमज्जयति पुत्रम् वै संसारे जनकः पिता सन्तारैति संसारात् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरम् ज्ञात्वा पितरम् गुरुमर्चयेत् शृङ्गशुश्रूषया चापि धनादी स्वाजितैर्गुरुम् पादादिकेशपर्यन्तम् लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरोः धनरूपैः पादुकादी पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजयेत् गुरुपूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरुशेषम् तु यत्सर्वम् आत्मशुद्धिकरम् भवेत् गुरोः शेषः शिवोच्चिष्टम् जलमन्नादिनिर्मितम् शिष्यानाम् शिवभक्तानाम् ग्राह्यम् भोज्यम् भवेद्विजाः गुर्वनुज्ञाविरहितम् चोरवत्सकलम् भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञम् यत्नान् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनम् साध्यम् विशेषज्ञो हि मोचकः आदौ च विघ्नशमनम् कर्तव्यम् कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतम् साङ्गम् कर्म वै सफलम् भवेत् तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशम् पूजयेद्बुधः सर्वबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वान् देवान्यजेर्बुधः ज्वरादी ग्रन्थिरोगा च बाधा ह्याध्यात्मिकी मता पिशा च जम्बुकादीनाम् वल्मीकाद्युद्भवे तथा अकस्मादेव गोधादिजन्तूनाम् पतनेऽपि च गृहे कच्छपसर्पस्त्री दुर्जना दर्शनेऽपि च वृक्षनारीकवादीनाम् प्रसूतिविषयेऽपि च भावी दुःखम् समायाति तस्मात् ते भौतिका मताः अमेध्या च निपातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिश्च गोमारी च मसूरिका जन्मक्षग्रह सङ्क्रान्तिग्रहयोगाः स्वराशिके दुःस्वप्नदर्शनाद्या च मदा वै ह्याभिरैविकाः शवचाण्डालपतितस्पर्शात् अन्तर्गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूचके शान्तियज्ञम् तु मतिमान् कुर्यात् तद्दोषशान्तये देवालये ध गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गने प्रदेशोन्नतम् धिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलम् कृते भारमात्रम् व्रीहिधान्यम् प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलम् तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुना वेष्टितम् कुम्भम् नवगुग्गुलुधूपितम् मध्ये स्थाप्य महाकुम्भम् तथा दिक्ष्वपि विन्यसेत् सनालाम्रककूर्चादीन् कलशाम् च तथाष्टसु पूरयेन्मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्यसितेन हि प्रक्षिपेन्नवरत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मजम् कर्मज्ञं च सपत्नीकम् आचार्यं वरयेद् बुधः सुवर्ण प्रतिमां विष्णोर् इन्द्रादीनां च निक्षिपेत् स शिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमावाह्य पूजयेत् प्रागादिषु यथा मन्त्रम् इन्द्रादीन् क्रमशो यजेत् तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्यां च नमोऽन्तेन यथा क्रमम् आवाहनादिकं सर्वम् आचार्येनैव कारयेत् आचार्यमृद्विजा सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेच्छदम् कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान् देहो ममाचरेत् कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधाः एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीद कालदेशानुसारतः शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च फलाशकम् समिधन्नाद्यकैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण बाहुनेत् प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं सराचरेत् पुण्याहं वाचयित्वा ते दिने सम्प्रोक्षये जलैः ब्राह्मणान् भोजयेत्तश्चाद्यावदाहुतिसङ्ख्यया आचार्य च हविष्याची ऋद्विजश्च भवेद्बुधाः आदित्यादीन् ग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋद्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यान् नवरत्नं यथा क्रमम् दशदानं ददः कुर्याद् भूरिदानं ततः परम् बालानाम् उपवीतानां गृहिणां वनिनां धनम् कन्यानां च सभर्तॄणां विधवानां ततः परम् तन्त्रोपकरणं सर्वम् आचार्याय निवेदयेत् उत्पातानां च मारीणां दुःखस्वामीयमस्पृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत् शतनिष्केन वा कुर्याद् दशनिष्केन वा पुनः पाशां कृधरं कालं कुर्याद् पुरुषरूपिणम् तत्स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्या दक्षिणया सह तिलदानं ददः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये आज्यावेक्षणदानं च कुर्याद्व्याधिनिवृत्तये सहस्रं भोजयेद्विप्रां दरिद्रः शतमेव वा वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजां कुर्यात् भूतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् भूरिभोजनरूपतः एवं कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्नुयात् शान्तियज्ञमिमं कुर्याद् वर्षे वर्षेत् फाल्गुणे दुर्दर्शनादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत् महापापादिसम्प्राप्तौ कुर्याद्भैरवपूजनम् महाव्याधिसमुत्पत्तौ सङ्कल्पम् पुनराचरेत् सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानमधाचरेत् तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्किञ्चिद्दानमाचरेत् दिवाकरम् नमस्कुर्यार्मन्त्रे मन्त्रेण अष्टोत्तरम् शतम् सहस्रमयुतं लक्षं कोटिं वा कारयेद्बुधः नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टा स्युः सर्वदेवताः त्वत्स्वरूपेऽर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते याचास्म्यद् अहं तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता नम्नोऽहं हि स्वदेहेन भो महां स्त्वमधि प्रभो न शून्यो मत्स्वरूपो वै तदधासोऽस्मि साम्प्रतम् यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत् अधात्र शिव नैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत् शिवप्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रमयुतं लक्षं कोटिं मन्येन कारयेत् शिवप्रदक्षिणात् सर्वं पादकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधेर्मूलं हि पादकं धर्मेनैव हि पापानाम् अपनोधनमीरितं शिवो देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदने अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणमिदीरितम् क्रियया जपरूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणम् जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमिदीरितम् शिवस्य मायाचक्रे हि बलिपीठं तदुच्यते बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत् नमस्कारं ददः कुर्या प्रदक्षिणमिदीरितम् निर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणं जननं मरणं द्वन्द्वं शिवमायासमर्पितं शिवमायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वात्मभाग्भवेत् यावद्देहं क्रियाधीन सजीवो बद्ध उच्यते देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधैः मायाचक्रप्रणेता हि शिवः परमकारणं शिवमायार्पितद्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत् शिवस्यादिप्रियं विद्या प्रदक्षिणं नमो बुधाः प्रदक्षिणनमस्काराः शिवस्य परमात्मनः षोडशैरुपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणानि विनाश्यं हि पादकं नास्ति भूतले प्रदक्षिणाविनाश्यं हि पादकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत् शिवपूजापरो मौनी तस्य सत्यादिगुणसंयुतः क्रियातपोजपज्ञान ध्यानेष्वैकैकमाचरेत् ऐश्वर्यम् दिव्यदेहश्च ज्ञानम् अज्ञानसंशयः शिवसान्निध्यमित्येतत् क्रियादीनाम् फलम् भवेत्। करणेन फलम् याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वात् न्यबुद्ध्या जनितानिव यथा देशम् यथा कालम् यथा देहम् यथा धनम् यथा योग्यम् प्रकुर्वीत क्रियादीम् शिवभक्तिमान् न्यायाजितम् सुवित्तेन वसेत् प्राज्ञशिवस्थले जीवहिंसादिरहितम् अतिक्लेशविवर्जितम् पञ्चाक्षरेण जप्तम् च तोयमन्नम् विदुःसुखम् अथवाहुर् दरिद्रस्य भिक्षान्नम् ज्ञानदम् भवेत् शिवभक्तस्य भिक्षान्नम् शिवभक्तिविवर्धनम् शम्भुसत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्नम् शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धा न भुक्सदा मौनी रहस्यम् न प्रकाशयेत् प्रकाशयेत्तु भक्तानाम् शिवमाहात्म्येव हि रहस्यम् शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः शिवभक्तो वसेन्नित्यम् शिवलिङ्गम् समाश्रितः स्थानुलिङ्गाश्रयेणैव स्थानुर्भवति भूसुराः पूजयाचरलिङ्गस्य क्रमान्मुक्तो भवे ध्रुवम् सर्वमुक्तम् समासेन साध्यसाधनमुत्तमम् व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तम् यच्छ्रुतम् हि मया पुरा भद्रम् अस्तु हि वोऽस्माकम् शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमम् भटतेऽध्यायम् यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानम् स लभते शिवस्य कृपया बुधाः। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् साध्यसाधनखण्डे शिवलिङ्गमाहात्यवर्णनम् नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ
2: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

तथा एता भिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशां धृत्यै पशवो वा इष्टकागारवत्यं वै पशवो मोपतिष्ठन्ते द्वे समीची पुरस्तादुभयत दत्या द्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुपद

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: भगवत भक्तजन, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रणीत यह मनीषा पंचक स्तोत्र का पाठ हम लोगों ने किया। भगवत भक्तजन, कल हम लोगों ने आचार्य के जीवन को देखा। एक साधक किस प्रकार से जीवन में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जीवन के प्रारंभ में संघर्ष सबके जीवन में है और उस संघर्ष को कैसे पार करता हुआ वो जीवन में परम सुख परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। पिता शिवगुरु और मां भद्रा की एकमात्र संतान, जन्म के बाद ही पिता 3 साल अवस्था में ही पिता चल बसे। एकमात्र मां के सहारा वही बालक, परंतु बालक के साथ मां का जो संबंध ममता के द्वारा बंधी हुई है वह अत्यंत निविड़ है, गाढ़ है। आचार्य ने विचार करते हैं कि मेरे मन चित्त ये जो निश्चय है परमात्मा अस्तित्व उसमें लगा है। गुरु गृह से अध्ययन करके आने के बाद सहज रूप से मां के मन में कुछ और अभिलाषा होती है, परंतु आचार्य शंकर बालक शंकर मां को कैसे समझाए। शास्त्रकारों का निश्चय है कि जब मन में कुछ बात निश्चय हो जाए, वो निश्चय अगर अपरिवर्तन, तो व्यक्ति के जीवन में वो निश्चय को वो प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। भगवत भक्तजन, शास्त्र अध्ययन, पूर्व कर्म, सौकर्य के कारण आचार्य शंकर के मन में ऐसा एक अभिलाषा कि इस जीवन को हम परमात्मा के लिए लगा दें। इसीलिए जीवन के प्रारंभ से लेकर के गुरुगृह अध्ययन अध्यापन साधना और समावर्तन तक यही प्रोसेस है। आधुनिक विचारकों का निश्चय है कि ये जो स्टडी लाइफ है, अध्ययन जीवन है, यही मनुष्य जीवन के एक निश्चय का अवसर है। व्यक्ति मानव मनुष्य अगर उस समय निश्चय कर लेता है कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं प्राप्त करूं, तो वो बिल्कुल उसी पर जीवन को बिता देते हैं। और अध्ययन अध्यापन के बाद भी अगर वो निश्चय नहीं हो पाता है तो इस निश्चय तक पहुंचने में अनेक समय हम बिता देते हैं नारायण। और अक्सर वर्तमान आधुनिक युग में नवजीवन को देखते हैं तो यही लगता है कि उनका कोई निश्चय नहीं है, कोई एम नहीं है, विदाउट एम, विदाउट निश्चय के वो जी रहे हैं, चल रहे हैं। और जब तक वो निश्चय को मानते हैं ये मेरा निश्चय है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है। इसीलिए हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य रह करके गुरुगृह में जाकर के शास्त्र अध्ययन, इसका मतलब है वो शास्त्र अध्ययन करते करते जीवन में क्या प्राप्त करना है, जीवन का क्या लक्ष्य है, वो निश्चय कर लेता है और बाकी जीवन उस निश्चय को ही प्राप्त करने के लिए बिताते हैं। आचार्य शंकर के जीवन में वो निश्चय वो प्राप्त कर गए और भगवान को ही जीवन अर्पण करे, इस जीवन का एक निश्चय प्राप्त करके और उसी पर चलने का दृढ़ संकल्प किया। मां को कई बार उन्होंने निवेदन किए कि मुझे सन्यासी जीवन जीना है, परंतु नैतिक कर्तव्य बोध को देख करके वो चुप हो जाता है। मां भी उनके सामने कुछ प्रकट नहीं करती है। इससे पूर्व मां को पता लगा था कि इस बालक का आयु स्वल्प है, परिश्रमित है, परिमित है, वो भी मां की एक वेदना है। और साथ साथ जब पुत्र से ये सुनती है कि सन्यास जीवन जीना चाहते हैं, तो मां की जो वेदना है वो मां ही समझ सकती है। माताओं की ये जो जीवन है ये पूरा सेक्रीफाइस जीवन है, मुझे लगता है। मां बाप के घर पालन पोषण बड़ी हुई है और फिर वहां से उनको हटना पड़ता है, जाना पड़ता है ससुराल है, तो एक त्याग, एक सेक्रीफाइस। और फिर वहां जाकर भी उनको कई प्रकार के सेक्रीफाइस जीवन में करना पड़ता है। और जब जिसको सहारा बांध करके जीना चाहती है, ऐसा अवलंबन आश्रय जब उठ जाता है अथवा निकलने का मन बना लेता है, तो वो भी उनके लिए एक बड़ा दुखद है। वो भी एक तपस्या है, एक सेक्रीफाइस, एक समर्पण है, त्याग है। आचार्य को देख करके सब लोगों ने ऐसा ही लगा कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म तेज से अभिभूत यह बालक तो घर में रहने वाला नहीं है, पर तो मां के आशीर्वाद के बिना, मां के आशीष के बिना बुझा नहीं सकते। कई बार उन्होंने मां से निवेदन किया, प्रार्थना की, परंतु मां अनुमति देने में असमर्थ महसूस करती है। दैवी घटना के बल पर ऐसा अवसर आया कि नदी में स्नान करने गए और मगरमच्छ ने पकड़ा, आप लोगों को पता है, और वो आचार्य बालक शंकर चिल्लाते हुए मां को पुकारे कि हे मां, अब तो मेरा जीवन संकट में है, मैं तो जा रहा हूं, किंतु इससे पूर्व मेरा जीवन सफल हो जाए। ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस जिसको आप कहते हो, ये सफलता किस में है? भोग में है, ऐश्वर्य में है, समृद्धि में है, प्रतिष्ठा में है, मान में है, सम्मान में है, किस में आप सक्सेस मानते हैं? क्या रामकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव, इन लोग जीवन में सफलता, जीवन को सफल नहीं बना पाए कि जो जिस डिग्री के बल पर हम झुक गए, चल नहीं पा रहे हैं, रिलेशन को ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, ये संबंध, ये सफलता है, किसको आप सफल मानते हैं? मीरा ने सारा जग मीरा को लांछन किया, क्या क्या उनके जीवन में बताया, पागली है, पागल है, बावरी है, परंतु हकीकत में वास्तव में मीरा पागल है कि हम विषयों के द्वारा पागल है। मां से बालक पूछते हैं, मां तुम तो हमसे ज्यादा उम्र बिताए हो, तुम्हारा अनुभव हमसे ज्यादा है। बालक शंकर मां से कहते हैं, तो इस संसार के क्षणिकता भंगुरता को आपने देखा नहीं? अगर आपने संसार के क्षणिकत्व को अनुभव किया है तो वही संसार में हमें क्यों आप प्रेरित करना चाहते हैं? अगर आपको अनित्य को अनुभव है, अनित्य के प्रति आप सजग है, तो उस अनित्य संसार में हमें क्यों आप प्रेरित करना चाहते हैं? मां निर्वाक हो गई। भागवत के उस श्लोक को आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी मानो याद दिलाए मां को, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए मां वैराग्य जो जीवन में थोड़ी बहुत भी आई है उसको आप प्रतिष्ठित करने के लिए अवसर दे, और तब तक मां जो है आज्ञा देती है कि बस तुम प्रेष मंत्र उच्चारण करो, संन्यास लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो संकट में है, तुम जा रहे हो, और जो है मां के परमिशन से आज्ञा से वो संन्यास का मंत्र उच्चारण जिसको प्रेष मंत्र बोलते हैं वो उच्चारण करते हैं। तब तक संन्यास लेने के तत्पश्चात तो वो मगरमच्छ उसको छोड़ करके चले जाते। ऊपर उठ के आए, मां के आंख में आंसू, बालक की त्याग समर्पण, वो अभी तक मां के थे परंतु अभी उस मंत्र के द्वारा वो और किसी को अर्पण कर गए। जो पूर्व में था वो अब नहीं रहा। आकर के मां को निवेदन किया कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि सन्यासियों का नियम है 3 रात्रि कहीं भी वास कर सकते हैं। और उसी वृक्ष के नीचे वो 2 दिन रुके, मां को सांत्वना दिए, और मां समझ गए कि चलो जीवन के मुझे पता है कि स्वल्प आयु है, और इस स्वल्प आयु में वो अगर जीवन को सफल बना सकते हैं तो क्यों मैं जीवन के प्रतिबंधक बन करके रहूं। तो वो 3 रात रुकने के बाद वो निकल पड़ता है। आचार्य जाते समय मां निवेदन करती हैं कि देख बेटा, हम सब गृहस्थ है, संसारी है, परंतु ये शरीर का एक मूल्य है, इसके एक अंत्यक्रिया होनी चाहिए शास्त्रीय विधि अनुसार। मेरे दिल की यही इच्छा है कि तुम जीवन में ईश्वर के बनो, परंतु अंतिम समय में तुम जरूर उपस्थित हो। अगर तुम ये वचन स्वीकार करते हो तो बाकी जीवन में प्रभु के लिए मैं भी समर्पण होकर के ही जी लूंगी। आचार्य शंकर मां को वचन दिया कि मां अंतिम समय में जब भी आप मुझे स्मरण करोगी मैं जरूर उपस्थित रहूंगा, और वो निकल पड़ता है। बाकी जीवन साधना में तत्पर हुए, गोविंद पाद के पास गए, चारों वेदों के ब्रह्मवाणियों को द्वारा उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि अनुभव प्राप्त किया। गोविंद पाद उपदेश देते हैं कि जाओ काशी में जाकर के कुछ रचना करो, अद्वैत मत का प्रचार करो, ब्रह्मसूत्र भाष्यों का रचना करो। और महाराज काशी में पहुंचते हैं गुरु आज्ञा को लेकर के।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. பக்தோ, ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் நாயன்மார் யா சந்த் கி கஹானி, ஜின்கா நாம் ஹை ஏனாதிநாதர். ये तमिल प्रदेश में भक्ति आंदोलन के एक सामाजिक संत थे। भक्ति समाज के इस दौर में यह देखा जाता है कि तमिल प्रदेश में छोटी जाति के कई व्यक्तियों के आदर्श जीवन के कारण उन्हें संत होने का गौरव मिला है। ईल वंश के लोग प्राय व्यापार करते थे और अपने युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। इसी ईल वंश में चोल क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत में है, उसमें ऐनादिनाथ का जन्म हुआ। राजाओं और वीर युवकों को तलवार चलाने की शिक्षा देना उनका काम था। उनके पूर्वज भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। वे युद्ध कला से संबंध विविध क्षेत्रों में सैकड़ों वीरों को हरा चुके थे। उनका चचेरा भाई अतिशूरन था। कुल परंपरा से अतिशूरन भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देता था, लेकिन ऐनादिनाथ की योग्यता और लोकप्रियता को देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। उसने ऐनादिनाथ को अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन ऐनादिनाथ के द्वार पर चल पड़े और उन्होंने ये ऐनादिनाथ को ललकार कर कहा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने की के वंशानुगत अधिकारों का निर्णय शक्ति परीक्षण से होता है। हम दोनों अपने अपने शिष्यों सहित मुकाबला कर लें। इस द्वंद्व में जो विजयी हो उसको सभी आयुध विद्यालयों का प्रधान होने का अधिकार मिलेगा। ऐनादिनाथ ने इस आवाहन को स्वीकार किया और निश्चित दिन और स्थान पर अपने शिष्यों समेत पहुंच गए। अतिशूरन भी अपने योग्य शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। दोनों दल परस्पर टकराए, भयंकर मुकाबला हुआ, रक्त की नदियां बह चली। अंत में अपने योद्धाओं को पूरी तरह से पराजित होते हुए देखकर अतिशूरन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उनके अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो शेष रहे वे युद्ध क्षेत्र से इसी भांति भाग गए जिस प्रकार से सत्य ज्ञान होने पर मनो कामनाएं, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि दूर भाग जाते हैं। अब अतिशूरन को ज्ञात हुआ कि वह ऐनादिनाथ को कभी पराजित नहीं कर सकते। वह व्याकुल हो पड़े और उन्होंने एक षड्यंत्र की रचना कर डाली। वह जानते थे कि ऐनादिनाथ के मन में शिव चिन्ह विभूत और विभूतधारी शिव भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा की भावना थी। उसने इसे अपने षड्यंत्र का आधार बनाया। उसने पुनः ऐनादिनाथ को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया और उनसे एकांत में कहा कि व्यर्थ में रक्तपात के स्थान पर शिष्यों को बलि नहीं बनाना चाहिए, परंतु दोनों का निर्णायक संघर्ष ही उचित है। निर्धारित स्थान और दिन पर ऐनादिनाथ और अतिशूरन पहुंच गए। ऐनादिनाथ ने अपने परिवार तथा शिष्यों तक को इस द्वंद्व का की सूचना न दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हीरो जड़ी लकड़ी की ढाल बनाकर अतिशूरन ने अपना मुख छिपाए रखा। जिस क्षण ऐनादिनाथ का हाथ प्रबल हुआ और वह आक्रामक मुद्रा में आए तो प्रवंचक अतिशूरन ने अपनी ढाल नीचे कर दी। ऐनादिनाथ विस्मयपूर्वक खड़े हो गए, क्योंकि अतिशूरन के मस्तक पर शिव की पवित्र विभूत शोभायमान हो रही थी। उन्होंने विचार किया, शिव चिन्ह धारण करने वाले की हत्या पाप है, पर यदि मैं तलवार फेंक दूं तो अतिशूरन को किसी निहत्ते को मारने का पाप लगेगा। यह विचार करके वे तलवार हाथ में रखे रहे और अतिशूरन को अपनी हत्या करने का अवसर दे दिया। भक्त के हृदय की भावनाओं को जानते हुए शिव ने उसी क्षण उन्हें दर्शन देकर उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। वे कैलाश चले गए। इस कथा में वर्णित ऐनादिनाथ और इससे को हम मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकते। शत्रु के क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति रखते हुए भी और अतिकूल शत्रु को क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति और उसके अनुकूल स्थिति होते हुए भी उन्होंने इस कालक्षत्र को मनमानी करने दी क्योंकि वह शिव वेशधारी है। इस अद्भुत कथ्य कृत्य के लिए इन्हें पागल समझना भारी भूल होगी। एक श्रेष्ठ आदर्श को जीवन लक्ष्य बनाने के बाद संत लोग उस सिद्धांत में समझौता नहीं करते, उनकी प्रकृति में यह नहीं है। इसलिए ये सच में महान और उच्च कोटि के नायन मारिया संत थे। इनके बारे में सुंदर, जो कि बहुत बड़े कवि भी थे और संत थे, ने कहा है, मैं अनादिनाथ के दासों का भी दास हूं। हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु एक अद्भुत आदर्श के रूप में इन्हें स्मरण जरूर कर सकते हैं। अनादिनाथ सच में शिव के एक प्रबल और उच्च कोटि के भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Sursan, phir dugna, aap logon ne suna hai na ye kahani to bahut bahar. तो बहुत सुना। जब हनुमान ने देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने बुद्धि लगा ली है, क्योंकि उनके पास बुद्धि था इसलिए लगाई। हमारे पास बुद्धि नहीं हो उसके लिए बुद्धि नहीं है, और के लिए तो है। तो उन्होंने तुरंत बुद्धि लगा लिया। अब इसके मुख को पार नहीं पाएंगे शरीर बढ़ाकर, हाँ तो क्या करें। बोले, मशक समान कपि रूप धरई, छोटा सा मच्छर बन गए। हाँ, भगवान हनुमान जी को काम आ गया भगवान की सृष्टि। यदि भगवान ने मच्छर की सृष्टि न किया होता, आज हनुमान को अपने जान बचाना मुश्किल संभव होता सुरसा के सामने। मच्छर की सृष्टि परमात्मा की है और उस परमात्मा के सृष्टि का उपयोग किया हनुमान जी ने, और मशक समान कपि रूप धराई, और फट उसको कहा कि देख, घुस गए उसके मुख के अंदर। बोले, ले खा ले, तेरे मुख के अंदर मैं घुस गया हूं, चबा ले। अब उसका इतना बड़ा मुख था, वो चबाने लगी तो कहां होगा, कुछ नहीं। तो हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए, कहीं चिपक गए वो। कभी कभी खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए धाना वगैरह खाते हो ना, बरियाली वगैरह, तो चबाते चबाते किसी दांत के कहीं खोच में जाकर वो फंस जाता है, बरियाली है ना, फंसा ही रहता है। कुल्ला करो तो नहीं जाता, फिर एक तिनका लेकर जबरदस्ती निकालोगे तभी जाएगा। हनुमान जी सुरसा के मुख के अंदर बरियाली जैसे फंसता है, सुरक्षित बैठ गए। सुरसा ने देखा कि अब तो खा गए, निकल गया, अब वाह है नहीं अब। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कान से निकल गए। हनुमान जी बोले, तूने खाया कि नहीं मुझे? बोले, हां खाया तो सही, अब तो मैं जाऊंगा राम के काम करने के लिए। तब सुरसा, हाँ सुरसा कोई राक्षसी नाम था वो, लेकिन देवताओं के प्रायोजित थी वो, है ना, रामायण में साफ लिखा है। कोई हनुमान के दुश्मन के रूप में नहीं, राम के दुश्मन के रूप में नहीं, हनुमान की बुद्धि परीक्षा के लिए नाग माता देव माता शब्द आया है। वो कहा कि हनुमान तुम बहुत बुद्धिशाली हो, तुम अपने काम करने में सफल हो जाओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी चले गए। इतनी लंबी कथा कहां से आ गई भाई, मशकत्वम नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता। हनुमान जी को मच्छर के रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, और आप लोगों को यदि पूछा जाए मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो चाहोगे कि नहीं, मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो ना। क्यों? हनुमान जी को मच्छर होने में कोई आपत्ति नहीं रही तो तुम्हें क्यों आपत्ति होगी, बोलो। देखो ये प्रासंगिक है। हनुमान जी का शरीर बांदर का हो चाहे मच्छर का हो, अंत में आया है हृदय परमात्मा में लगा हुआ है। यदि हृदय राम में लगा हुआ है हनुमान जी का, वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से देव थे, एकादश रुद्र थे, तब भी उनका मन भगवान में लगा था। मनुष्य थे तो भी उनका मन भगवान में लगा था। बंदर हो गए तो भी उनका मन कहां लगा है? राम में लगा है। और उस समय मशक हो गए, मच्छर हो गए, तब भी उनकी वृत्ति, उनका मन राम के चरण और राम की सेवा में लगा हुआ है। तब जब मन राम की सेवा और राम के चरण में लगता है, परमात्मा में लगता है, तो शरीर से क्या लेना देना है, बोलो। आप यही चाहो कि शरीर मरने के बाद दूसरे जन्म में शरीर जो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन शिव चरण में लगे रहे, यही हम चाहते हैं। हमको मच्छर से कोई लेना देना नहीं, मच्छर के शरीर से कोई, हनुमान को फर्क पड़ा, बोलो। मच्छर होने पर हनुमान जी को क्या, भगवान राम के चरण में जो भक्ति भाव था वो खंडित हुई क्या? हुई क्या? यदि वृत्ति खंडित होगी तो मनुष्य हो गए तो भी वृत्ति खंडित होती, अभी हो ही रही है, अभी मनुष्य है तो कौन सा बहादुरी कर ली है, वृत्ति खंडित हो रही है कि नहीं? और जबकि हनुमान जी मच्छर हो गए तो भी उनकी वृत्ति खंडित नहीं है। नरत्वम देवत्वम नगमन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम। ये देखो, चलो मच्छर तो होना नहीं चाहोगे, मरने के बाद गधा होना चाहोगे कि नहीं, पशु होना चाहोगे कि नहीं, बोलो है? नहीं चाहोगे। बैल होना चाहोगे कि नहीं? नंदी को जब फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, बोलो। नंदी को फर्क पड़ा? नंदी वास्तव में पहले मनुष्य थे, देव किसी की ऋषि के श्राप से वो नंदी होकर पशु होकर पैदा हुए, लेकिन शरीर नंदी का पशु का होने पर भी उनका मन भगवान शिव से अलग नहीं हुआ है। पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। हनुमान को मच्छर के शरीर में भी राम भक्ति यथावत चल रही है। पशुत्वम नंदी को पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं, बोलो। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं? क्या बात है, हुए। पुराण में स्पष्ट लिखा है हयग्रीव। अरे हयग्रीव अवतार है कि नहीं? क्योंकि एक हयग्रीव नाम का असुर था, उसने वरदान ये मांगी कि मुझे मेरे से ही मृत्यु हो, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, अन्य किसी से नहीं हो। तेरे से ही का मतलब हयग्रीव से ही हो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। अब उसने सोचा हयग्रीव केवल मैं हूं, मेरे वाला कोई दुनिया में हयग्रीव है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, तेरे जैसे हजार हयग्रीव तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो जानते थे ना ये असंभव नहीं है। अब उसने ये सोचा कि मेरा हयग्रीव मेरे अलावा कोई हयग्रीव है ही नहीं, इसलिए अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि हयग्रीवों को कैसे मारें। तो भगवान हयग्रीव नहीं बनेंगे तो उसको नहीं मार सकते। यदि भगवान नारायण के नारायण ही रहे, चतुर्भुज के चतुर्भुज ही रहे तो हयग्रीव को नहीं मार सकेंगे। तब किसी अन्य राक्षस से वो युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद भगवान नारायण थक के चूर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने धनुष बाण ड्यूड़ी में रखा, यहां रखे ऐसा टिकाया और सो गए। तो उसी समय देवताओं ने कहा ये दीमक को, दीमकों को, देवभागवत में कथा आती है ये, दीमकों को कहा कि तुम जाओ, सब जाकर वो जो धनुष बाण है ना जिस पर उन्होंने गर्दन टिका के रखा है उसके रस्सी को चाट कर तोड़ डालो। दीमकों ने कहा कि ये तो भगवान नारायण है, आराम कर रहे हैं, उनका निद्रा भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तुमको उससे भी ज्यादा पुण्य लगेगा, तुम चिंता मत करो। बोले पहले तो मना करते रहे दीमक ने, पुराण में लिखा देवी भागवत में, ध्यान देना, मना करते रहे दीमकों ने। बाद में कहा कि नहीं हमको क्या मिलेगा, बोलो यदि हम जाएंगे वो धनुष बाण की रस्सी को चाट कर खत्म कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा कि तुम लोगों को जो हमारे लिए हवन करेंगे ना पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, तो स्वाहा करते समय में जो हाथ में चरू लेकर कुंड में डालते हैं उससे समय जो नीचे गिरता है ना वो सब तुम्हारे मिल जाएगा। बस दीमकों ने कहा कि तब तो बढ़िया है, हम कर देंगे वही काम। देवताओं को अर्पण किया हुआ भाग भी हमको मिलता है, वो यज्ञ शेष तुम्हारा भाग है, जाओ। तो सब दीमक मिलके गए और रस्सी को चाट लिए। चाटते जैसे रस्सी का वो धनुष का रस्सी टूट गया, वो धनुष तो ऐसा झटका लगा कि भगवान नारायण का गर्दन कट के गया, समुद्र में गिर गया। लेव जी गिर गया, अब क्या करें। तो तुरंत इंद्र आदि आए सब, अरे रे रे रे रे, तो वहां ऐरावत हाथी कुछ था होगा, कोई नहीं, वो अश्व होगा, उच्च श्रवा आदि पार से उसका गर्दन काटा और लगा दिया। तो भगवान जिंदे हो गए, वैद्य तो थे ही, ऑपरेशन करने वाले देवताओं का वैद्य कौन, अश्विनी कुमार है, देवता तो थे ही, वो तुरंत सर्जरी कर दी। बस भगवान तो अब क्या हो गए, हयग्रीव हो गए, हयग्रीव, हय नहीं हुए, हयग्रीव हो गए हैं। देखो हनुमान जी क्या हुए हैं, ना सॉरी माने गणेश जी का क्या हो गए, वो करी ग्रीवा, हाथी ग्रीवा, शरीर सब ठीक है लेकिन मुख दूसरे का है। भगवान नारायण जब हयग्रीव हो गए, बोले इसमें भी कोई राज है, चलो। तो उसी हयग्रीव रूप से फिर हयग्रीव राक्षस के साथ भगवान नारायण ने युद्ध किया, तो हयग्रीव द्वारा ही हयग्रीव की मृत्यु हुई। तो दो हयग्रीव हुए, एक राक्षस हयग्रीव, दूसरा साक्षात भगवान हयग्रीव। तो भगवान जब घोड़े होने में कोई आपत्ति नहीं तो हमको क्या आपत्ति है भाई, बोलो हमको क्या आपत्ति है, भगवान को आपत्ति नहीं हुई। पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम, शंकराचार्य जी कहते हैं हे शिवा, यदि कीटत्व कीड़ा भी बनना पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, अभी तो मैं मनुष्य हूं, लेकिन इस मनुष्य जन्म के बाद यदि कीड़ा भी बनना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिच्छू को तो कीड़ा ही तो कहेंगे ना, बोलो कहेंगे कि नहीं? बिच्छू पशु कोटि का है कि पक्षी कोटि का है कि मनुष्य कोटि का है कि कीड़ा कोटि का है? कीड़ा कोटि का है ना? अब वह भी भगवान शिव के श्रृंगार में काम आ गया कि नहीं? कर्ण कुंडल बन गए भगवान शिव के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है? देख लो। लेकिन वृत्ति भगवान की होनी चाहिए, शरीर के मत ध्यान मत दो, शरीर जो कुछ भी हो, शंकराचार्य जी वही आगे कहते हैं, विहगत्वम पक्षी। पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं है भाई, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे काक भुसुंडी क्या थे, हैं? काक भुसुंडी मनुष्य थे कि पशु थे कि कीड़े थे कि क्या थे? पक्षी, विहग आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे। उनको पक्षी शरीर प्राप्त होकर कोई अड़चन रहा? श्रवण मनन निधि ध्यासन करने में उनको कोई रुकावट हुई? नंदी को पशु शरीर होने में कोई रुकावट हुआ शरीर से? कोई रुकावट नहीं। व्यगत्वम, पक्षी का शरीर मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरुड़ पक्षी है कि पशु है? और भगवान की सेवा करने में वह समर्थ हुआ कि नहीं? वाहन बन गया कि नहीं? नंदी पशु है, शिवजी की सेवा करने में समर्थ हो गया कि नहीं? और तुम हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं, हैं? क्या कर रहे हैं? जीव जी की सेवा करते भी पूरा नहीं हो रहा है, शिव जी की तो छोड़ दो, जीव जी ये सब क्या है? जीव जी है, पत्नी पति की सेवा करते करते थक जाती है, पति पत्नी की सेवा फरमाइश पूरा करते करते थक जाता है, मां बच्चे की सेवा करते करते थक जाती है, हा? बोलो ये सब क्या है? किन की सेवा कर रहे हैं? जीव जी की। और हम मनुष्य होकर भी शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग नंदी क्या शिव जी को लेकर ढो के चले जा रहे हैं? आहा। और पक्षी होकर भी गरुड़ भगवान को ढोकर चले जा रहे हैं, मयूर पक्षी होकर भी षणमुख भगवान कार्तिक को लेकर चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है पक्षी होने पर? भगवान की सेवा करने में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई अड़चन हो रहा है, हैं? नहीं हो रहा है। अरे बिच्छू जहरीला होने पर भी भगवान शिव का कुंडल बन रहा है, क्या सुंदर है। सर्प जीव कीड़ा होकर भी देख लो, चंद्रमा देव हुए कि नहीं? देवत्वम, और वह भगवान शिव के मुकुट की शोभा, भगवान शिव के सिर की शोभा बन गया कि नहीं? वो तुम कहोगे कि नहीं महाराज, भगवान की सेवा के लायक हम नहीं हैं, हम तुमसे पूछते हैं, तुम कहते हो ना भगवान की सेवा लायक हम नहीं हैं, हम गए गुजरे हैं, है? हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुमने ऐसे कौन से अपराध कर ली जो भगवान की सेवा लायक नहीं? चंद्रमा ने जो अपराध की है, क्या वैसा अपराध तुम लोगों ने कर चुके हो क्या? चंद्रमा ने कौन सा अपराध किया था पता है? हैं? अपने गुरु के पत्नी माने पत्नी को ही, गुरु माता को ही पत्नी बनाया कि नहीं? कितना नीच कर्म कर लिया उसने, हैं? किया कि नहीं बोलो ना इतिहास। बुध किससे पैदा हुआ है? और बुध की मां किसकी पत्नी थी है? चंद्रमा की पत्नी थी, बृहस्पति की पत्नी थी। बृहस्पति कौन थे? चंद्रमा के गुरु। और इतना निकृष्ट कर्म किया, इतना पाप कर्म किया, फिर भी शरीर से उसने जो कुछ भी किया लेकिन मन भगवान शिव में लगा हुआ होने के कारण वृत्ति से वह भगवान शिव के भक्ति करने में समर्थ हुआ। श्राप मिल गया, कलंकी है वो, कलंकित है, निकृष्ट कर्म किया, फिर भी भगवान के शोभा का बन गया कि नहीं, भगवान के प्रसन्नता का पात्र बना कि नहीं, मुझे लगता है वो उसकी वृत्ति ठीक है। देवत्व शरीर से कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, मन ठीक रखना, वृत्ति ठीक रखना, वृत्ति भगवान के चरण में होनी चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हृदय है। हृदय ठीक रखो, हृदय से काम करो, सेवा भगवान की सेवा, संसार की सेवा मन लगाकर न भी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा की सेवा मन लगाकर करो। नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता मृग, हमने मृग के बारे में कह तो दिया, दो प्रकार के मृग हैं, लेकिन भगवान शिव के जो चतुर्भुज हैं ना रूप, चार हाथ वाले भगवान शिव के, एक हाथ में ये दो उंगलियों के बीच में मृग है। मैंने पहले दिन भी इसकी व्याख्या कर दिया था। मृगधरम भगवान शिव के ध्यान मंत्र में आता है कि नहीं, मृगधरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये दंतिक्त्वाकृत सुंदराम वरधरे त्रैलोक्य सहारे हरे। मृगधरम भगवान शिव मृगों को धारण करते हैं, उनके लिए प्रिय है वो। वसुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम, आदिपद से जो उक्त है, जिसका नाम लिया पशुत्व देवत्व, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई योनियां हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देव से भिन्न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राक्षस भी तो देव भिन्न है ना, राक्षस किस योनि, पशु में आएंगे कि पक्षी में आएंगे कि मनुष्य में आएंगे कि देवता में आएंगे, राक्षस हैं असुर हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से राक्षस और असुर होने पर भी मन भगवान के चरण में लगता है तो राक्षस होने में कोई आपत्ति नहीं। प्रहलाद का शरीर राक्षस का शरीर है। हाँ।

शरीर से कुछ लेना देना नहीं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, ये हैरान करते हैं प्राय करके, क्योंकि हम नेपाल में जहां मेरा आश्रम है गंडकी नदी के किनारे और शालिग्राम क्षेत्र है, वो गंडकी नदी में शालिग्राम आते हैं और वहां शालिग्राम मिलते हैं और गंडकी नदी का अंत वहीं होता है। मुक्तिनाथ दामोदर कुंड से निकल के जो गंडकी नदी आती है वह देवघाट जहां हमारा आश्रम है वहां तक गंडकी नदी उसका नाम रहता है। जब दूसरी बड़ी नदी के साथ वह मिलती है तो दो नदी मिलकर उसका तीसरा नाम नारायणी हो जाता है, गंडकी नाम खत्म हो जाता है। त्रिशूली और गंडकी दोनों मिलकर संगम में दोनों मिलने के बाद फिर उसके आगे नारायणी होती है, उसका नाम नारायणी होता है। और नारायणी कहां तक है तो बिहार में पटना के पास सोनपुर तक वह गंडकी नारायणी रहती है और फिर वहां भागीरथी के साथ मिलने के बाद वो नारायणी नाम भी खत्म हो जाता है। तब फिर वहां नाम क्या होता है उसका, सभी नदी मिलकर सभी का नाम एक ही होता है, भागीरथी। सारे नदी भागीरथी में मिलते हैं, अपना नाम और रूप समाप्त करके समुद्र में पहुंचते समय में सभी नदी का नाम क्या हो जाता है, भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा हो जाता है। कोई नदी अपने नाम और रूप में समुद्र में नहीं पहुंचते, शुरू से अंत तक एक ही नाम रहे ऐसा नदी केवल दुनिया में एक ही है। ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलते समय तो ब्रह्मपुत्र के रूप में मिलता है, लेकिन जहां उद्गम हुआ और तिब्बत और चाइना में उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, दूसरे नाम से वहां, और भारत में आने के बाद उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलता है। तो जहां उद्गम से समुद्र पर्यंत सतत प्रवाह के रूप में एक ही नाम और एक ही रूप में प्रवाहित होने वाली नदी भागीरथी गंगा, वहां गोमुख से लेकर सागर तक उसका नाम भागीरथी ही रहता है और सबका नाम बाधित हो जाते हैं। अलकनंदा नाम गंगा में मिलने के बाद बाधित हो गया, ये देख लो। जमुना का नाम इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा में मिलने के बाद जमुना बाधित, उसके आगे जमुना कई नाम नहीं है, प्रयाग तक ही जमुना है, सरस्वती प्रयाग तक ही है, वहां मिल जाने के बाद भागीरथी मिलने के बाद उसका नाम बाधित। आगे फिर गंगा, सब गंगा गंगा। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवापि अभिगच्छन्ति तथा नाम रूपम विहाय, गीता में कहा ना उसे, नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता

सदा त्वत् पाद अब्ज, पाद प्लस अब्ज माने अब्ज माने अप माने जल, उससे उत्पन्न हुआ वह क्या हुआ अब्ज, किसका नाम है कमल, तो पाद कमल चरण कमल पादाब्ज का अर्थ क्या हुआ पाद माने चरण, तो पादाब्ज यानी तुम्हारे आपके चरण कमल। सदा त्वत्पादाब्ज स्मरणम, आपके चरण कमल की स्मृति स्मरण, स्मरण कहां किससे होता है बोलो, स्मरण हृदय से होता है, स्मरण किससे हृदय से, चित्त से, हृदय में चार जो भाग हैं उनमें से जो चित्त है वह स्मृति चित्त में सन्निहित है। तो पादाब्ज स्मृति यानी हृदय, परमानंद लहरी उस हृदय

0: में भगवान शिव की जो स्मृति है वही आनंद का तरंग बन जाता है। जिस समय शिव चरण का स्मरण होगा, स्मरण कर्ता को बिना विषय आनंद का अनुभव होगा, और जिस समय भगवान शिव का स्मरण न करके किसी और का स्मरण करोगे तो वो आनंद तरंग हृदय में, वो आनंद का तरंग नहीं होगा। किसी वियोगता व्यक्ति का स्मरण करोगे, मरे हुएओं का, क्या हृदय में आनंद की अनुभूति होगी? और किसी प्रियतमा का या प्रिय का स्मरण करोगे तो क्या वो आनंद की अनुभूति होगी? उत्तेजना बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति क्या होगा? विक्षेप बढ़ेगा और विक्षेप बढ़ेगा, व्यक्ति बेचैन हो जाएगा।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम .org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.

की अखंडानंद जी महाराज की। तुम लोगों ने अभी बड़ी सुंदर बात श्रवण की, प्रातः स्मरणीय सुनाम धन्य जगत वंदनीय पूज्य चरण अखंडानंद जी महाराज जी के श्री मुख से एक एक सूत्र वाक्य जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के विषय में प्रीति न हो वह हृदय हृदय नहीं पाषाण है, उसको हृदय नहीं कहना चाहिए, वो हृदय कमल नहीं बल्कि पाषाण है। और पाषाण जब चट्टाने टूटती हैं तब जाकर उसमें से झरना निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है। तो आज यहां पर भी वही लीला है जो पूज्य पराशरी ने सूत्र पाठ किया। यदि आपका हृदय कमल है तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर को तांडव लीला करनी पड़ती है। जब तांडव लीला करते हैं तो पाषाण भी चकनाचूर होकर के वहां से फिर झरना निकलती है। और तांडव शब्द बनता भी है तड़ी आघाते धातु से, तड़ी आघाते है क्योंकि इदित धातुओं को नूम हो जाता है और आगे वृद्धि होकर तांडव बनता है। इसके पूर्व में भगवान ने पहले नीलकंठ लीला बतलाया, इस नीलकंठ लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप। इसके बाद में चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में अविद्या का अध्यारोप के बाद में काम दहन लीला। जैसे संसार में जब कोई आता है तो आने के बाद अविद्या का आरोप होता है, ये प्रत्येक प्राणी के जीवन की घटना है। जब भी कोई जन्म लेता है तो वह निर्गुण निर्विशेष रूप से रहता है। दार्शनिक सिद्धांत भी है, उत्पन्नम क्षणम अगुणम निष्क्रियम तिष्ठति। और इस बात को न्यायिक की नहीं बल्कि वेदांती मानते हैं कि प्रथम क्षण में सारे ज्ञान निर्गुण निष्क्रिय होते हैं, बाद में उसमें विशेषता आती है। जैसे कुछ देखेंगे तो यह कुछ है ऐसा होता है, पहले यह कुछ है, इसके बाद उसकी विशेषता मालूम पड़ती है कि यह घट है पट है या जो है स्वरूप है या कुरूप है। विशेषता द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में आती है। यहां पर भी जब कोई भी संसार में आता है तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय, बाद में अविद्या का आरोप कर दिया कि तुम यह हो वह हो, मनुष्यत्व का ब्राह्मणत्व का समाज का धर्म का तमाम आरोप करते हैं, यह अविद्या है। आरोप होने के बाद तदनुसार वह चेष्टा करता है। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुसार, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार, यदि उसको कह दिया कि तुम इस्लाम हो तो उसके अनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी, प्रवृत्ति होगी। जब उसमें परेशान होता है तब जाकर भगवान काम दहन करते हैं, कामना का नाश। उपनिषद में आता है, वेद व्यास भगवान स्वयं ही कहते हैं, तृष्णा क्षयस्येते नार्हता षोडशीम कला। एते तृष्णा, ये जो हमारे तृष्णाएं हैं कामनाएं, इनके क्षीण होने से अनंत सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में इतना सुख है, उन सारे सुख को एक तरफ रख दो और तृष्णा क्षय को एक तरफ, वह पलड़ा भारी होगा। इतना सुख तृष्णा क्षय में है। उसी तृष्णा से जब प्राणी पीड़ित होते हैं तो भगवान शंकर ने काम का दहन यहाँ किया। अब काम दहन के बाद फिर आप क्या करते हैं लौकिक व्यवहारिक जगत में, जैसे किसी बच्चे की कामना है कि हमें साक्षर होना है, साक्षर होने के बाद वह अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो गया, नौकरी लग गई, धन कमाने लग गया, इसके बाद आप कहते हैं कि अब जो इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। शादी ब्याह के पूर्व आप
नृत्य करते हैं ना, नाच गा। ऐसे ही जब यहाँ काम दान लीला हो गई तो भगवान शंकर इस 16वें श्लोक में तांडव नृत्य करेंगे। इस शिव तत्व समष्टि चैतन्य का नाम है, व्यष्टि चैतन्य समष्टि चैतन्य, चैतन्य दो तरह का है। व्यष्टि मतलब कि जो प्रत्येक प्राणियों के अंदर अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम है व्यष्टि चैतन्य। और सारे अंतःकरणावच्छिन्न उपाधि में जो चेतन है, अंतःकरण की उपाधि में जो चैतन्य का प्रतिफलन है, उन सबका जो अधिष्ठान, जो सब में मैं कर रहा, उसका नाम है समष्टि चेतन। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य के शरीर में अनंत क्रिमियां हैं, परंतु उन सब का अहंकार एक आदमी करता है, मैं। किसी व्यक्ति का नाम श्यामलाल है, तो वह श्यामलाल अहंकार करता है कि मैं, और उसके शरीर में हजारों रक्त और श्वेत क्रिमियां हैं, आपस में उनका संघर्ष भी होता है। श्वेत कृमि रक्त कृमि का भक्षण करते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, और रक्त कीटाणु बन जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है। उसमें भी जीव है, परंतु उससे हमको कोई लेन देन नहीं होता। जब बीमार पड़ते हैं तब ख्याल आता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा इंजेक्शन देता है कि श्वेत कृमि बढ़े। इसी प्रकार से यहां पर भी जितने भी चेतन है, सबका जो मैं करके अहंकार कर रहा, उसका नाम है समष्टि चैतन्य। तो जब प्राणियों की कामना तृष्णा क्षय हो गई, जैसे आपके लाडले का, लाडली का जब नौकरी लग गया, अब विवाह होने वाला होता है, तो आप जो है ना नाच गान सब तमाशा करते हैं। ऐसे भगवान शंकर अब तांडव नृत्य करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी दशम स्कंद के 28वें अध्याय से लेकर जो 32 तक रास पंचाध्याय है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण महारास लीला तभी प्रारंभ किया जब कामदेव को जो है दूर किया। प्रसंग आता है ना कि जब कामदेव भगवान के यहां पधारा रास के पूर्व, भगवान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं कामदेव हूं, जो देवताओं असुरों और मनुष्यों के इंद्रियों को मैं मंथन करता रहता। भगवान ने कहा कि तुम्हारा यहां पर क्या काम है? बोले कि मैं आया हूं कि जरा आपसे भी एक बार कुछ सपना शास्त्रार्थ हो जाए। भगवान ने कहा शास्त्रार्थ हो जाए, परंतु शास्त्रार्थ हमेशा संबल में होता है, तो आप शास्त्रार्थ कैसे करोगे? मैदानी जंग सबके बीच में करोगे या जो है ना किले की लड़ाई, मतलब केवल हम और तुम दोनों ही होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा? कामधेनु का देखो ये दो का शास्त्रार्थ तो मैं कर चुका हूं भगवान शंकर से, तो वहां मैं हार गया हूं, इसलिए अब ऐसी भूल तो मैं करता नहीं। ये दो रहेंगे तो एक प्रबल होगा तो उसको जला देगा, और मान लो मैदान में होगा तो कोई तो बीच बचाव करेगा, इसलिए अब मैदानी जंग होगा। भगवान ने कहा ठीक है। पर शास्त्रार्थ के पूर्व पहले परीक्षण होता है, ये करने में समर्थ है कि नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा जरा मैं देखता हूं कि तुम किस प्रकार से करोगे। जैसे ही भगवान अपने अधरा मृत पर बांसुड़ी पधरा करके अपने तिरछी चितवन से गान प्रारंभ किया, कामदेव वही मूर्छित हो गया। भगवान ने कहा कि तू क्या जो है जंग करेगा, यहां से चल, उसको भगा दिया। तब जाकर महाराज हुआ, एक तो कामदेव को वहां से खदेड़ा, और दूसरी लीला यह भी है कि ये जो काल बल नामक राक्षस है पुराण के अनुसार,
उस काल बल को भी भगवान ने तांडव नृत्य जब महाराज हुआ तब तक उसको दबा के रखा। ये काल बल राक्षस का काम होता है कि प्राणियों को हमेशा काल से बांध के रखना। जैसे कि हम लोग बंबई में पैदा हुए, एक कोई संवत्सर होगा और 100 वर्ष के बाद हम खलास हो जाएंगे, ये सब काल बल करता है। और जब तक काल बल राक्षस अपना काम करता रहेगा तब तक महाराज होना असंभव है। जवानी में कितना आनंद होता है, इंद्रियों का तेज है, सब कुछ है, परंतु आपको पता भी नहीं चलता है, बुढ़ापा तुरंत आ जाती है। ये काल बल के द्वारा बुढ़ापा आती है, आप नहीं चाहते बुढ़ापे को, आपको पता भी नहीं चलता है, पर कब कैसे आप 50 वर्ष के आगे बढ़ गए, वो सब काल बल करता है। तो वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण ने काल बल को भी नियंत्रित करके रखा। इसलिए 28वें श्लोक में कहा, भगवान अपि ताह रात्रि, ये ता शब्द बहुवचन है, साते ता, जैसे होता ना सहतौते, वैसे स्त्रीलिंग में साते ताह चलता है। ताह रात्रि कहा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका कहा, आगे कहा कि वृक्ष रंतु मनः चक्रे योग माया समावृत, और अंत में भी कहते हैं ब्रह्म रात्रे उपावृत्ते। देखो ब्रह्म रात्र और ता रात्रि से सिद्ध होता है कि वहां 1, 2, 3 रात्रियां नहीं थी। काल बल के नियंत्रण करने से प्राणियों को पता नहीं चला कि कितनी रात्रियां बीत गई। पुराण के अनुसार 43,20,000 वर्ष में आप 1,000 का गुणा कर दो, उतनी जो है ना ब्रह्म रात्रि कहलाती है और उतना ही दिन कहलाता है ब्रह्मा जी का। उतने समय तक जो है उस काल बल राक्षस को भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण ने दबा के रखा, नियंत्रित करके, किसी को पता ही नहीं चला कि महाराज कब तक चल रहा। ऐसे यहाँ पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इसके पूर्व में काम का दहन किया, अब काम के बाद काल बल राक्षस को नियंत्रित करने के लिए यह लीला करने जा रहे हैं, तांडव लीला, ताकि पाषाण भी पिघल जाए। लोग कहते हैं ना कि पाषाण पिघल गया, तो पाषाण हृदय वाले को भी किस प्रकार से आनंद हो उसके लिए भगवान तांडव लीला करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई राजा हो, राजा देश की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय करता है, बहुत धन भी खर्च करता है, समय पड़ने पर संग्राम भी करता है, परंतु कोई यदि कहे कि अहिंसा परमो धर्म है, बेचारे क्यों संग्राम कर रहे हैं, लोग जो है मारे जाते हैं, इतना धन खर्च होता है, अहिंसा परमो धर्म, और जब मान लो शत्रु आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे, आप ही कहेंगे कि राजा नपुंसक है, देखो कुछ नहीं करता है, ये भोगी अय्यासी है, चुपचाप पड़ा रहता है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, राज्य का अधिग्रहण कर लिया। तो कई बार रक्षा के लिए भी संग्राम करना पड़ता है। जो राजा शत्रुओं का दमन करता है या अपने राज्य के अंदर जो कुछ आतंकी है उनसे संग्राम करता है, तो संग्राम संग्राम के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं है, वह भी अहिंसा के लिए, शांति के लिए है। ऐसे यहाँ पर भी जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं उस समय वामय विभूता कुछ विपरीत स्थिति संसार की बन जाती है। संसार मान लो चाहे वैकुंठ लोक हो या स्वर्ग लोक हो या पृथ्वी लोक हो, इसकी स्थिति बिल्कुल विलक्षण हो जाती है। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने में कितनी तकलीफ होती है उसे ही मालूम है, उसका लक्ष्य भी है शांति प्राप्त करना, पर शांति प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक किसान खेती करता है, पर खेती करने में भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। कई बार तो फसल पकने के बाद यदि अचानक वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो नष्ट हो जाता है।
ऐसे यहाँ पर भी भगवान शंकर तो प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य कर रहे हैं, परंतु उस तांडव नृत्य से एक विलक्षण स्थिति बन जाती है, उसी का चित्रण किया है 16वें श्लोक में। और इसके बाद ज्ञान गंगा का अवतरण बतलाएंगे, पहले उच्चारण कर लें।

0: पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर तांडव नृत्य प्रारंभ करते हैं तो मही पादा घाता, नृत्य के पहले श्रृंगार बहुत जरूरी होता है। कोई भी जब किसी भी उत्सव में जब नाचता है तो नाचने के पूर्व वह श्रृंगार करता है। अभी आप लोगों ने परसों देखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आनंद उत्सव हुआ, तो कुछ जो है ना शोभा बढ़ाने के लिए या प्रजा के रंजन के लिए श्रृंगार करना पड़ता है। अब भगवान शंकर का श्रृंगार बड़ा विलक्षण है। चूड़ा मणि कृत विधुर, भगवान का जो मुकुट है ना वह मुकुट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है। टेढ़े चंद्रमा को तो मुकुट बनाया। चूड़ा मणि कृत विधुर वलई कृत वासुकी, और वासुकी कृत को तो भगवान ने जूड़ा में बांध लिया अपने। भव भवत भव्याय लीला तांडव पंडित, इसके बाद भगवान इतने भी उनके गण हैं उन गणों को निमंत्रित कर लिया हाथ में त्रिशूल। इसके बाद भगवान शंकर तांडव प्रारंभ करते हैं। तो भगवान के तांडव प्रारंभ करने से जो पाद के आघात से पादाघाताद मही संशय पदम सहसा ब्रजती स्थान में की थी। भगवान शंकर का एक नाम है नटराज राज। देखो श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, नटवर बोलते हैं ना, नटवर और नटराज एक ही अर्थ है। पर नटराज राज मतलब एक और राज जोड़ दो तो शंकर अर्थ हो जाएगा। व्याकरण महाभाष्य के पूर्व में एक श्लोक है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम उद्धर्तु काम सनकादि नेत्र। भगवान शंकर अपने भक्तों के कामना को परिपूर्ण करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। प्रयागराज में महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे और दूसरी तरफ सनकादि ऋषि भी समाधि लगाए हुए थे। पाणिनि ऋषि की कामना थी कि हमें व्याकरण दर्शन बनाना है तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, सूत्र चाहिए, और सनकादि ऋषियों की कामना थी तत्व ज्ञान की। तो भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करके नटराज राजो ननाद ढक्काम नौपंच वारम अपने डमरू को, ढक्काम बोलते डमरू को, उस डमरू को नौपंच, नौ और पांच कितना होता है 14 बार बजाया। जब 14 बार बजाया तो उस 14 बार बजाने से सनकादि ऋषियों को तो तत्व ज्ञान हुआ, और इधर जो बाजू में बैठे थे पाणिनि महर्षि जो व्याकरण दर्शन के आदि आचार्य माने जाते हैं, पाणिनि जी ने 14 सूत्र संकलित कर लिया। ऐ उण रील दृक् ए ओम ऐ औच हय वर्ट लण यमंगणनम झभय घट दस जब गड दस कफ छठ छठत कपय शहल। इस तरह से 14 सूत्र उसी डमरू के नाद से जो है निकला ऐसा अंकित कर लिया। एक ही डमरू का नाद है, उसे अपने प्रयोजन के अनुसार सूत्र निर्मित कर ली। उन्हीं सूत्रों के द्वारा इतना बड़ा व्याकरण दर्शन का सृजन हुआ। तो यहां पर भी भगवान शंकर जो तांडव नृत्य कर रहे हैं इससे सभी लोगों में प्रारंभ में बड़ा हलचल मचा। जब कहीं नाच गान होता है ना कुछ हलचल भी होता है। तो मई मतलब पृथ्वी है, या अचानक संशयित हो गई पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी देवता की, जो पृथ्वी जो अभिमानी देवता है, पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी चैतन्य है। हमारे यहाँ अनंत देववाद है और एक देववाद भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद का यह मंत्र है। एक ही तत्व चैतन्य है उसी को नाना प्रकार से कहा जाता है। जैसे एक ही विद्युत पावर है, वही विद्युत पावर अनेक यंत्रों के द्वारा अनेक कार्य करने में सक्षम होता है। पावर एक ही है पर इतने विपरीत कृत्य होते हैं। कूलर में, फ्रिज में ठंडी वस्तु होती है, हीटर में गर्म। ऐसे एक ही चैतन्य अनेक क्रिया करने में सक्षम होता है। ये उपाधियों का, यंत्रों का फर्क है। वैसे यहाँ पर पृथ्वी तत्व के जो अभिमानी देवता है, ये भगवान शंकर के तांडव नृत्य से, पद के आघात से, आपने देखा होगा कि भगवान का बायां पैर जो है ना नीचे दबा हुआ और ऊपर दाहिना उठाए, उस वाम पैर से काल बल राक्षस को दबा रखा है। फोटो में ना कई बार दिखाई देता है, एक कोई लेटा हुआ है, उसको भगवान शंकर का पैर जो लेटा हुआ है ना, वो काल बल राक्षस है जिससे कि मनुष्य बंधन भाव को प्राप्त करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण भी महाराज के पहले काल बल को धराशायी किया, इसलिए किसी को पता नहीं चला कितना समय बीत गया। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ना संशयित हो गई, संशय पद को प्राप्त हुई कि हमारी स्थिति कैसे रहेगी। पदम विष्णुर भ्राम्यत भुज परिग रुग्ण ग्रह गणम, और भगवान शंकर जब अपने भुजाओं को घुमाते हैं, त्रिशूल हाथ में है, तो भुजाओं के घुमाने से स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक भी वहां पर भी हलचल मच जाता है। जैसे कोई शंख बजाए ना तो कितना उसका गुंजार होता है, ऐसे ही वहां पर भी स्थिति जो है एक बार डवाडोल हो जाती है। सारे देवता खड़े हो जाते हैं कि क्या होने जा रहा है। मुहूर् द्यौ दौष्ट्यम, द्यौ लोक भी बार बार जो है संशयित हो जाता है, वहां पर भी वहां के प्राणियों को भी संशय हो जाता है। अनभृत जटा ताडित तटा, भगवान शंकर की जो जटाएं हिलती हैं, जटाओं के प्रहार से, स्पंदन से, हिलने से द्यौ लोक भी अपने आप में भ्रमित होने लगता है। जगत रक्षाई, अहो कन्वे करना, अहो मतलब आश्चर्य है, जगत की रक्षा के लिए जो भगवान का तांडव नृत्य है उससे विपरीत दशा हो रही है। ऐसे ही संसार में होता है। संसार में जब हम अपने परमार्थ मार्ग में अग्रसर होते हैं तो वहां पर विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, बिल्कुल विपरीत। आप तो समाज की भलाई के लिए या प्रसन्नता के लिए कोई बढ़िया काम करते हैं,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 2. Thank you.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द फॉलोइंग इज ऋग्वेदा சாக்கல சாக்கா மண்டலம் 1 சூக்தம் 86. தேங்க்யூ.

0: भगवत भक्तजन, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रणीत यह मनीषा पंचक स्तोत्र का पाठ हम लोगों ने किया। भगवत भक्तजन, कल हम लोगों ने आचार्य के जीवन को देखा। एक साधक किस प्रकार से जीवन में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जीवन के प्रारंभ में संघर्ष सबके जीवन में है और उस संघर्ष को कैसे पार करता हुआ वो जीवन में परम सुख परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। पिता शिवगुरु और मां भद्रा की एकमात्र संतान, जन्म के बाद ही पिता 3 साल अवस्था में ही पिता चल बसे, एकमात्र मां के सहारा वही बालक, परंतु बालक के साथ मां का जो संबंध ममता के द्वारा बंधी हुई है वह अत्यंत निविड़ है, गाढ़ है। आचार्य ने विचार करते हैं कि मेरे मन चित्त ये जो निश्चय है परमात्मा अस्तित्व उसमें लगा है। गुरु गृह से अध्ययन करके आने के बाद सहज रूप से मां के मन में कुछ और अभिलाषा होती है, परंतु आचार्य शंकर बालक शंकर मां को कैसे समझाए। शास्त्रकारों का निश्चय है कि जब मन में कुछ बात निश्चय हो जाए, वो निश्चय अगर अपरिवर्तन, तो व्यक्ति के जीवन में वो निश्चय को वो प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। भगवत भक्तजन, शास्त्र अध्ययन पूर्व कर्म सौकर्य के कारण आचार्य शंकर के मन में ऐसा एक अभिलाषा कि इस जीवन को हम परमात्मा के लिए लगा दें। इसीलिए जीवन के प्रारंभ से लेकर के गुरुगृह अध्ययन अध्यापन साधना और समावर्तन तक यही प्रोसेस है। आधुनिक विचारकों का निश्चय है कि ये जो स्टडी लाइफ है, अध्ययन जीवन है, यही मनुष्य जीवन के एक निश्चय का अवसर है। व्यक्ति मानव मनुष्य अगर उस समय निश्चय कर लेता है कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं प्राप्त करूं, तो वो बिल्कुल उसी पर जीवन को बिता देते हैं। और अध्ययन अध्यापन के बाद भी अगर वो निश्चय नहीं हो पाता है तो इस निश्चय तक पहुंचने में अनेक समय हम बिता देते हैं नारायण। और अक्सर वर्तमान आधुनिक युग में नवजीवन को देखते हैं तो यही लगता है कि उनका कोई निश्चय नहीं है, कोई एम नहीं है, विदाउट एम विदाउट निश्चय के वो जी रहे हैं, चल रहे हैं। और जब तक वो निश्चय को मानते हैं ये मेरा निश्चय है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है। इसीलिए हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य रह करके गुरुगृह में जा करके शास्त्र अध्ययन, इसका मतलब है वो शास्त्र अध्ययन करते करते जीवन में क्या प्राप्त करना है, जीवन का क्या लक्ष्य है, वो निश्चय कर लेता है और बाकी जीवन उस निश्चय को ही प्राप्त करने के लिए बिताते हैं। आचार्य शंकर के जीवन में वो निश्चय वो प्राप्त कर गए और भगवान को ही जीवन अर्पण करे, इस जीवन का एक निश्चय प्राप्त करके और उसी पर चलने का दृढ़ संकल्प किया। मां को कई बार उन्होंने निवेदन किए कि मुझे सन्यासी जीवन जीना है, परंतु नैतिक कर्तव्य बोध को देख करके वो चुप हो जाता है। मां भी उनके सामने कुछ प्रकट नहीं करती है। इससे पूर्व मां को पता लगा था कि इस बालक का आयु स्वल्प है, परिमित है, परिमित है, वो भी मां की एक वेदना है। और साथ साथ जब पुत्र से ये सुनती है कि सन्यास जीवन जीना चाहते हैं, तो मां की जो वेदना है वो मां ही समझ सकती है। माताओं की ये जो जीवन है ये पूरा सेक्रीफाइस जीवन है, मुझे लगता है। मां बाप के घर पालन पोषण बड़ी हुई है और फिर वहां से उनको हटना पड़ता है, जाना पड़ता है ससुराल है, तो एक त्याग, एक सेक्रीफाइस। और फिर वहां जाकर भी उनको कई प्रकार के सेक्रीफाइस जीवन में करना पड़ता है। और जब जिसको सहारा बांध करके जीना चाहती है, ऐसा अवलंबन आश्रय जब उठ जाता है अथवा निकलने का मन बना लेता है, तो वो भी उनके लिए एक बड़ा दुखद है। वो भी एक तपस्या है, एक सेक्रीफाइस, एक समर्पण है, त्याग है। आचार्य को देख करके सब लोगों ने ऐसा ही लगा कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म तेज से अभिभूत यह बालक तो घर में रहने वाला नहीं है, पर तो मां के आशीर्वाद के बिना, मां के आशीष के बिना बुझा नहीं सकते। कई बार उन्होंने मां से निवेदन किया, प्रार्थना की, परंतु मां अनुमति देने में असमर्थ महसूस करती है। दैवी घटना के बल पर ऐसा अवसर आया कि नदी में स्नान करने गए और मगरमच्छ ने पकड़ा, आप लोगों को पता है, और वो आचार्य बालक शंकर चिल्लाते हुए मां को पुकारे कि हे मां, अब तो मेरा जीवन संकट में है, मैं तो जा रहा हूं, किंतु इससे पूर्व मेरा जीवन सफल हो जाए। ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस जिसको आप कहते हो, ये सफलता किस में है? भोग में है, ऐश्वर्य में है, समृद्धि में है, प्रतिष्ठा में है, मान में है, सम्मान में है, किस में आप सक्सेस मानते हैं? क्या रामकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव, इन लोग जीवन में सफलता, जीवन को सफल नहीं बना पाए कि जो जिस डिग्री के बल पर हम झुक गए, चल नहीं पा रहे हैं, रिलेशन को ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, ये संबंध, ये सफलता है, किसको आप सफल मानते हैं? मीरा ने सारा जग मीरा को लांछन किया, क्या क्या उनके जीवन में बताया, पागली है, पागल है, बावरी है, परंतु हकीकत में वास्तव में मीरा पागल है कि हम विषयों के द्वारा पागल है। मां से बालक पूछते हैं, मां तुम तो हमसे ज्यादा उम्र बिताए हो, तुम्हारा अनुभव हमसे ज्यादा है। बालक शंकर मां से कहते हैं, तो इस संसार के क्षणिकता भंगुरता को आपने देखा नहीं? अगर आपने संसार के क्षणिकत्व को अनुभव किया है तो वही संसार में हमें क्यों आप प्रेरित करना चाहते हैं? अगर आपको अनित्य को अनुभव है, अनित्य के प्रति आप सजग है, तो उस अनित्य संसार में हमें क्यों आप प्रेरित करना चाहते हैं? मां निर्वाक हो गई भागवत के उस श्लोक को आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी मानो याद दिलाए मां को, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए मां वैराग्य जो जीवन में थोड़ी बहुत भी आई है उसको आप प्रतिष्ठित करने के लिए अवसर दे, और तब तक मां जो है आज्ञा देती है कि बस तुम प्रेष मंत्र उच्चारण करो, संन्यास लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो संकट में है, तुम जा रहे हो, और जो है मां के परमिशन से आज्ञा से वो संन्यास का मंत्र उच्चारण जिसको प्रेष मंत्र बोलते हैं वो उच्चारण करते हैं। तब तक संन्यास लेने के तत्पश्चात तो वो मगरमच्छ उसको छोड़ करके चले जाते। ऊपर उठ के आए, मां के आंख में आंसू, बालक की त्याग समर्पण, वो अभी तक मां के थे परंतु अभी उस मंत्र के द्वारा वो और किसी को अर्पण कर गए। जो पूर्व में था वो अब नहीं रहा। आकर के मां को निवेदन किया कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि सन्यासियों का नियम है 3 रात्रि कहीं भी वास कर सकते हैं, और उसी वृक्ष के नीचे वो 2 दिन रुके, मां को सांत्वना दिए, और मां समझ गए कि चलो जीवन के मुझे पता है कि स्वल्प आयु है, और इस स्वल्प आयु में वो अगर जीवन को सफल बना सकते हैं तो क्यों मैं जीवन के प्रतिबंधक बन करके रहूं। तो वो 3 रात रुकने के बाद वो निकल पड़ता है। आचार्य जाते समय मां निवेदन करती हैं कि देख बेटा, हम सब गृहस्थ है, संसारी है, परंतु ये शरीर का एक मूल्य है, इसके एक अंत्यक्रिया होनी चाहिए शास्त्रीय विधि अनुसार। मेरे दिल की यही इच्छा है कि तुम जीवन में ईश्वर के बनो, परंतु अंतिम समय में तुम जरूर उपस्थित हो। अगर तुम ये वचन स्वीकार करते हो तो बाकी जीवन में प्रभु के लिए मैं भी समर्पण होकर के ही जी लूंगी। आचार्य शंकर मां को वचन दिया कि मां अंतिम समय में जब भी आप मुझे स्मरण करोगी मैं जरूर उपस्थित रहूंगा, और वो निकल पड़ता है। बाकी जीवन साधना में तत्पर हुए, गोविंद पाद के पास गए, चारों वेदों के ब्रह्मवाणियों को द्वारा उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि अनुभव प्राप्त किया। गोविंद पाद उपदेश देते हैं कि जाओ काशी में जाकर के कुछ रचना करो, अद्वैतवाद का प्रचार करो, ब्रह्मसूत्र भाष्यों का रचना करो। और महाराज काशी में पहुंचते हैं गुरु आज्ञा को लेकर के।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. பக்தோ, ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் நாயன்மார் யா சந்த் கி கஹானி, ஜின்கா நாம் ஹை ஏனாதிநாதர். ये तमिल प्रदेश में भक्ति आंदोलन के एक सामाजिक संत थे। भक्ति समाज के इस दौर में यह देखा जाता है कि तमिल प्रदेश में छोटी जाति के कई व्यक्तियों के आदर्श जीवन के कारण उन्हें संत होने का गौरव मिला है। ईल वंश के लोग प्राय व्यापार करते थे और अपने युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। इसी ईल वंश में चोल क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत में है, उसमें ऐनादिनाथ का जन्म हुआ। राजाओं और वीर युवकों को तलवार चलाने की शिक्षा देना उनका काम था। उनके पूर्वज भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। वे युद्ध कला से संबंध विविध क्षेत्रों में सैकड़ों वीरों को हरा चुके थे। उनका चचेरा भाई अतिशूरन था। कुल परंपरा से अतिशूरन भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देता था, लेकिन ऐनादिनाथ की योग्यता और लोकप्रियता को देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। उसने ऐनादिनाथ को अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन ऐनादिनाथ के द्वार पर चल पड़े और उन्होंने ये ऐनादिनाथ को ललकार कर कहा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने की के वंशानुगत अधिकारों का निर्णय शक्ति परीक्षण से होता है। हम दोनों अपने अपने शिष्यों सहित मुकाबला कर लें। इस द्वंद्व में जो विजयी हो उसको सभी आयुध विद्यालयों का प्रधान होने का अधिकार मिलेगा। ऐनादिनाथ ने इस आवाहन को स्वीकार किया और निश्चित दिन और स्थान पर अपने शिष्यों समेत पहुंच गए। अतिशूरन भी अपने योग्य शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। दोनों दल परस्पर टकराए, भयंकर मुकाबला हुआ, रक्त की नदियां बह चली। अंत में अपने योद्धाओं को पूरी तरह से पराजित होते हुए देखकर अतिशूरन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उनके अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो शेष रहे वे युद्ध क्षेत्र से इसी भांति भाग गए जिस प्रकार से सत्य ज्ञान होने पर मनोकामनाएं, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि दूर भाग जाते हैं। अब अतिशूरन को ज्ञात हुआ कि वह ऐनादिनाथ को कभी पराजित नहीं कर सकते। वह व्याकुल हो पड़े और उन्होंने एक षड्यंत्र की रचना कर डाली। वह जानते थे कि ऐनादिनाथ के मन में शिव चिन्ह विभूत और विभूतधारी शिव भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा की भावना थी। उसने इसे अपने षड्यंत्र का आधार बनाया। उसने पुनः ऐनादिनाथ को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया और उनसे एकांत में कहा कि व्यर्थ में रक्तपात के स्थान पर शिष्यों को बलि नहीं बनाना चाहिए, परंतु दोनों का निर्णायक संघर्ष ही उचित है। निर्धारित स्थान और दिन पर ऐनादिनाथ और अतिशूरन पहुंच गए। ऐनादिनाथ ने अपने परिवार तथा शिष्यों तक को इस द्वंद्व की सूचना न दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हीरो जड़ी लकड़ी की ढाल बनाकर अतिशूरन ने अपना मुख छिपाए रखा। जिस क्षण ऐनादिनाथ का हाथ प्रबल हुआ और वह आक्रामक मुद्रा में आए तो प्रवंचक अतिशूरन ने अपनी ढाल नीचे कर दी। ऐनादिनाथ विस्मयपूर्वक खड़े हो गए, क्योंकि अतिशूरन के मस्तक पर शिव की पवित्र विभूत शोभायमान हो रही थी। उन्होंने विचार किया, शिव चिन्ह धारण करने वाले की हत्या पाप है, पर यदि मैं तलवार फेंक दूं तो अतिशूरन को किसी निहत्ते को मारने का पाप लगेगा। यह विचार करके वे तलवार हाथ में रखे रहे और अतिशूरन को अपनी हत्या करने का अवसर दे दिया। भक्त के हृदय की भावनाओं को जानते हुए शिव ने उसी क्षण उन्हें दर्शन देकर उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। वे कैलाश चले गए। इस कथा में वर्णित ऐनादिनाथ और इससे को हम मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकते। शत्रु के क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति रखते हुए भी और अतिकूल शत्रु को क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति और उसके अनुकूल स्थिति होते हुए भी उन्होंने इस कारण शत्रु को मनमानी करने दी क्योंकि वह शिव वेशधारी है। इस अद्भुत कथ्य कृत्य के लिए इन्हें पागल समझना भारी भूल होगी। एक श्रेष्ठ आदर्श को जीवन लक्ष्य बनाने के बाद संत लोग उस सिद्धांत में समझौता नहीं करते, उनकी प्रकृति में यह नहीं है। इसलिए ये सच में महान और उच्च कोटि के नायन मारिया संत थे। इनके बारे में सुंदर, जो कि बहुत बड़े कवि भी थे और संत थे, ने कहा है, मैं अनादिनाथ के दासों का भी दास हूं। हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु एक अद्भुत आदर्श के रूप में इन्हें स्मरण जरूर कर सकते हैं। अनादिनाथ सच में शिव के एक प्रबल और उच्च कोटि के भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Sursan, phir dugna, aap logon ne suna hai na ye kahani to bahut bahar. To bahut suna. Jab Hanuman ne dekha, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने बुद्धि लगा ली है, क्योंकि उनके पास बुद्धि था इसलिए लगाई। हमारे पास बुद्धि नहीं हो, उसके लिए बुद्धि नहीं है, और के लिए तो है, तो उन्होंने तुरंत बुद्धि लगा लिया। अब इसके मुख को पार नहीं पाएंगे शरीर बढ़ाकर, हाँ तो क्या करें, बोले मशक समान कपि रूप धर आई, छोटा सा मच्छर बन गए। हाँ, भगवान हनुमान जी को काम आ गया भगवान की सृष्टि। यदि भगवान ने मच्छर की सृष्टि न किया होता, आज हनुमान को अपने जान बचाना मुश्किल संभव होता सुरसा के सामने। मच्छर की सृष्टि परमात्मा की है, और उस परमात्मा के सृष्टि का उपयोग किया हनुमान जी ने, और मशक समान कपि रूप धराई, और फट उसको कहा कि देख, घुस गए उसके मुख के अंदर, बोले ले खा ले, तेरे मुख के अंदर मैं घुस गया हूं, चबा ले। अब उसका इतना बड़ा मुख था, वो चबाने लगी तो कहां होगा, कुछ नहीं। तो हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए, कहीं चिपक गए वो। कभी कभी खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए धाना वगैरह खाते हो ना, बरियाली वगैरह, तो चबाते चबाते किसी दांत के कहीं खोच में जाकर वो फंस जाता है, बरियाली है ना, फंसा ही रहता है, कुल्ला करो तो नहीं जाता, फिर एक तिनका लेकर जबरदस्ती निकालोगे तभी जाएगा। हनुमान जी सुरसा के मुख के अंदर बरियाली जैसे फंसता है, सुरक्षित बैठ गए। सुरसा ने देखा कि अब तो खा गए, निकल गया, अब वाह है नहीं अब, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कान से निकल गए। हनुमान जी बोले तूने खाया कि नहीं मुझे, बोले हाँ खाया तो सही, अब तो मैं जाऊंगा राम के काम करने के लिए। तब सुरसा, हाँ सुरसा कोई राक्षसी नाम था वो, लेकिन देवताओं के प्रायोजित थी वो, है ना, रामायण में साफ लिखा है, कोई हनुमान के दुश्मन के रूप में नहीं, राम के दुश्मन के रूप में नहीं, हनुमान की बुद्धि परीक्षा के लिए, नाग माता देव माता शब्द आया है। वो कहा कि हनुमान तुम बहुत बुद्धिशाली हो, तुम अपने काम करने में सफल हो जाओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी चले गए। इतनी लंबी कथा कहां से आ गई भाई, मशकत्वम नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता। हनुमान जी को मच्छर के रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, और आप लोगों को यदि पूछा जाए मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो चाहोगे कि नहीं, मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो ना। क्यों? हनुमान जी को मच्छर होने में कोई आपत्ति नहीं रही तो तुम्हें क्यों आपत्ति होगी, बोलो। देखो ये प्रासंगिक है। हनुमान जी का शरीर बांदर का हो चाहे मच्छर का हो, अंत में आया है हृदय परमात्मा में लगा हुआ है। यदि हृदय राम में लगा हुआ है हनुमान जी का, वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से देव थे, एकादश रुद्र थे, तब भी उनका मन भगवान में लगा था। मनुष्य थे तो भी उनका मन भगवान में लगा था। बंदर हो गए तो भी उनका मन कहां लगा है? राम में लगा है। और उस समय मशक हो गए, मच्छर हो गए, तब भी उनकी वृत्ति, उनका मन राम के चरण और राम की सेवा में लगा हुआ है। तब जब मन राम की सेवा और राम के चरण में लगता है, परमात्मा में लगता है, तो शरीर से क्या लेना देना है, बोलो। आप यही चाहो कि शरीर मरने के बाद दूसरे जन्म में शरीर जो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन शिव चरण में लगे रहे, यही हम चाहते हैं। हमको मच्छर से कोई लेना देना नहीं, मच्छर के शरीर से कोई, हनुमान को फर्क पड़ा, बोलो। मच्छर होने पर हनुमान जी को क्या, भगवान राम के चरण में जो भक्ति भाव था वो खंडित हुई क्या? हुई क्या? यदि वृत्ति खंडित होगी तो मनुष्य हो गए तो भी वृत्ति खंडित होती, अभी हो ही रही है, अभी मनुष्य है तो कौन सा बहादुरी कर ली है, वृत्ति खंडित हो रही है कि नहीं? और जबकि हनुमान जी मच्छर हो गए तो भी उनकी वृत्ति खंडित नहीं है। नरत्वम देवत्वम नगमन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम। ये देखो, चलो मच्छर तो होना नहीं चाहोगे, मरने के बाद गधा होना चाहोगे कि नहीं, पशु होना चाहोगे कि नहीं, बोलो है? नहीं चाहोगे। बैल होना चाहोगे कि नहीं? नंदी को जब फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, बोलो। नंदी को फर्क पड़ा? नंदी वास्तव में पहले मनुष्य थे, देव किसी की ऋषि के श्राप से वो नंदी होकर पशु होकर पैदा हुए, लेकिन शरीर नंदी का पशु का होने पर भी उनका मन भगवान शिव से अलग नहीं हुआ है। पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। हनुमान को मच्छर के शरीर में भी राम भक्ति यथावत चल रही है। पशुत्वम नंदी को पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं, बोलो। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं? क्या बात है, हुए। पुराण में स्पष्ट लिखा है हयग्रीव। अरे हयग्रीव अवतार है कि नहीं? क्योंकि एक हयग्रीव नाम का असुर था, उसने वरदान ये मांगी कि मुझे मेरे से ही मृत्यु हो, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, अन्य किसी से नहीं हो। तेरे से ही का मतलब हयग्रीव से ही हो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। अब उसने सोचा हयग्रीव केवल मैं हूं, मेरे वाला कोई दुनिया में हयग्रीव है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, तेरे जैसे हजार हयग्रीव तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो जानते थे ना ये असंभव नहीं है। अब उसने ये सोचा कि मेरा हयग्रीव मेरे अलावा कोई हयग्रीव है नहीं, इसलिए अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि हयग्रीव को कैसे मारें। तो भगवान हयग्रीव नहीं बनेंगे तो उसको नहीं मार सकते। यदि भगवान नारायण के नारायण ही रहे, चतुर्भुज के चतुर्भुज ही रहे, तो हयग्रीव को नहीं मार सकेंगे। तब किसी अन्य राक्षस से वो युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद भगवान नारायण थक के चूर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने धनुष बाण ड्यूड़ी में रखा, यहां रखे ऐसा टिकाया और सो गए। तो उसी समय देवताओं ने कहा ये दीमक को, दीमकों को, देवी भागवत में कथा आती है, ये दीमकों को कहा कि तुम जाओ, सब जाकर वो जो धनुष बाण है ना जिस पर उन्होंने गर्दन टिका के रखा है, उसके रस्सी को चाट कर तोड़ डालो। दीमकों ने कहा कि ये तो भगवान नारायण है, आराम कर रहे हैं, उनका निद्रा भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तुमको उससे भी ज्यादा पुण्य लगेगा, तुम चिंता मत करो। बोले पहले तो मना करते रहे दीमक ने, पुराण में लिखा देवी भागवत में, ध्यान देना, मना करते रहे दीमकों ने। बाद में कहा कि नहीं, हमको क्या मिलेगा बोलो, यदि हम जाएंगे वो धनुष बाण की रस्सी को चाट कर खत्म कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा कि तुम लोगों को जो हमारे लिए हवन करेंगे ना पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, तो स्वाहा करते समय में जो हाथ में चरु लेकर कुंड में डालते हैं उससे समय जो नीचे गिरता है ना, वो सब तुम्हारे को मिल जाएगा। बस दीमकों ने कहा कि तब तो बढ़िया है, हम कर देंगे वही काम। देवताओं को अर्पण किया हुआ भाग भी हमको मिलता है, वो यज्ञ शेष तुम्हारा भाग है, जाओ। तो सब दीमक मिलके गए और रस्सी को चाट लिए। चाटते जैसे रस्सी का वो धनुष का रस्सी टूट गया, वो धनुष तो ऐसा झटका लगा कि भगवान नारायण का गर्दन कट के गया, समुद्र में गिर गया। लेव जी गिर गया, अब क्या करें। तो तुरंत इंद्र आदि आए सब, अरे रे रे रे रे, तो वहां ऐरावत हाथी कुछ था होगा, कोई नहीं, वो अश्व होगा, उच्च श्रवा आदि, पाट से उसका गर्दन काटा और लगा दिया। तो भगवान जिंदे हो गए, वैद्य तो थे ही, ऑपरेशन करने वाले देवताओं का वैद्य कौन, अश्विनी कुमार है, देवता तो थे ही, वो तुरंत सर्जरी कर दी। बस भगवान तो अब क्या हो गए, हयग्रीव हो गए, हयग्रीव, हय नहीं हुए, हयग्रीव हो गए है। देखो हनुमान जी क्या हुए है? ना सॉरी, माने गणेश जी का क्या हो गए, वो करी ग्रीवा, हाथी ग्रीवा, शरीर सब ठीक है लेकिन मुख दूसरे का है। भगवान नारायण जब हय ग्रीव हो गए, बोले इसमें भी कोई राज है, चलो। तो उसी हयग्रीव रूप से फिर हयग्रीव राक्षस के साथ भगवान नारायण ने युद्ध किया, तो हयग्रीव द्वारा ही हयग्रीव की मृत्यु हुई। तो दो हयग्रीव हुए, एक राक्षस हयग्रीव, दूसरा साक्षात भगवान हयग्रीव। तो भगवान जब घोड़े होने में कोई आपत्ति नहीं, तो हमको क्या आपत्ति है भाई, बोलो हमको क्या आपत्ति है। भगवान को आपत्ति नहीं हुई। पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम, शंकराचार्य जी कहते हैं हे शिवा, यदि कीटत्व कीड़ा भी बनना पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, अभी तो मैं मनुष्य हूं, लेकिन इस मनुष्य जन्म के बाद यदि कीड़ा भी बनना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिच्छू को तो किड़ा ही तो कहेंगे ना, बोलो कहेंगे कि नहीं? बिच्छू पशु कोटि का है कि पक्षी कोटि का है कि मनुष्य कोटि का है कि कीड़ा कोटि का है? कीड़ा कोटि का है ना? अब वह भी भगवान शिव के श्रृंगार में काम आ गया कि नहीं? कर्ण कुंडल बन गए भगवान शिव के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है? देख लो। लेकिन वृत्ति भगवान की होनी चाहिए, शरीर के मतलब ध्यान मत दो, शरीर जो कुछ भी हो, शंकराचार्य जी वही आगे कहते हैं, विहगत्वम पक्षी। पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं है भाई, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे काक भुसुंडी क्या थे, हैं? काक भुसुंडी मनुष्य थे कि पशु थे कि कीड़े थे कि क्या थे? पक्षी, विहग आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे। उनको पक्षी शरीर प्राप्त होकर कोई अड़चन रहा? श्रवण मनन निधि ध्यासन करने में उनको कोई रुकावट हुई? नंदी को पशु शरीर होने में कोई रुकावट हुआ शरीर से? कोई रुकावट नहीं। व्यगत्वम पक्षी का शरीर मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरुड़ पक्षी है कि पशु है? और भगवान की सेवा करने में वह समर्थ हुआ कि नहीं? वाहन बन गया कि नहीं? नंदी पशु है, शिवजी की सेवा करने में समर्थ हो गया कि नहीं? और तुम हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं, हैं? क्या कर रहे हैं? जीव जी की सेवा करते भी पूरा नहीं हो रहा है, शिव जी की तो छोड़ दो, जीव जी ये सब क्या है? जीव जी है, पत्नी पति की सेवा करते करते थक जाती है, पति पत्नी की सेवा फरमाइश पूरा करते करते थक जाता है, मां बच्चे की सेवा करते करते थक जाती है, हा? बोलो ये सब क्या है? किन की सेवा कर रहे हैं? जीव जी की। और हम मनुष्य होकर भी शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग नंदी क्या शिव जी को लेकर ढो के चले जा रहे हैं? आहा। और पक्षी होकर भी गरुड़ भगवान को ढोकर चले जा रहे हैं, मयूर पक्षी होकर भी षण्मुख भगवान कार्तिक को लेकर चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है पक्षी होने पर? भगवान की सेवा करने में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई अड़चन हो रहा है, हैं? नहीं हो रहा है। अरे बिच्छू जहरीला होने पर भी भगवान शिव का कुंडल बन रहा है, क्या सुंदर है। सर्प जीव कीड़ा होकर भी देख लो, चंद्रमा देव हुए कि नहीं? देवत्वम, और वह भगवान शिव के मुकुट की शोभा, भगवान शिव के सिर की शोभा बन गया कि नहीं? वो तुम कहोगे कि नहीं महाराज, भगवान की सेवा के लायक हम नहीं हैं, हम तुमसे पूछते हैं, तुम कहते हो ना भगवान की सेवा लायक हम नहीं हैं, हम गए गुजरे हैं, है? हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुमने ऐसे कौन से अपराध कर ली जो भगवान की सेवा लायक नहीं? चंद्रमा ने जो अपराध की है, क्या वैसा अपराध तुम लोगों ने कर चुके हो क्या? चंद्रमा ने कौन सा अपराध किया था पता है? हैं? अपने गुरु के पत्नी माने पत्नी को ही, गुरु माता को ही पत्नी बनाया कि नहीं? कितना नीच कर्म कर लिया उसने, हैं? किया कि नहीं बोलो ना इतिहास। बुद्ध किससे पैदा हुआ है? और बुद्ध की मां किसकी पत्नी थी है? चंद्रमा की पत्नी थी, बृहस्पति की पत्नी थी। बृहस्पति कौन थे? चंद्रमा के गुरु। और इतना निकृष्ट कर्म किया, इतना पाप कर्म किया, फिर भी शरीर से उसने जो कुछ भी किया लेकिन मन भगवान शिव में लगा हुआ होने के कारण वृत्ति से वह भगवान शिव के भक्ति करने में समर्थ हुआ। श्राप मिल गया, कलंकी है वो, कलंकित है, निकृष्ट कर्म किया, फिर भी भगवान के शोभा का बन गया कि नहीं, भगवान के प्रसन्नता का पात्र बना कि नहीं, मुझे लगता है वो उसकी वृत्ति ठीक है। देवत्व शरीर से कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, मन ठीक रखना, वृत्ति ठीक रखना, वृत्ति भगवान के चरण में होनी चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हृदय है। हृदय ठीक रखो, हृदय से काम करो, सेवा भगवान की सेवा, संसार की सेवा मन लगाकर न भी करो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमात्मा की सेवा मन लगाकर करो। नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता मृग, हमने मृग के बारे में कह तो दिया दो प्रकार के मृग हैं, लेकिन भगवान शिव के जो चतुर्भुज हैं ना रूप, चार हाथ वाले भगवान शिव के, एक हाथ में ये दो उंगलियों के बीच में मृग है। मैंने पहले दिन भी इसकी व्याख्या कर दिया था, मृगधर्म भगवान शिव के ध्यान मंत्र में आता है कि नहीं, मृगधर्म पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये दंतिक्त्वाकृत सुंदराम वरधरे त्रैलोक्य सहारे हरे, मृगधर्म भगवान शिव मृगों को धारण करते हैं, उनके लिए प्रिय है वो। पशुत्वम कीटत्वम भवतु विहगत्वादि जननम, आदिपद से जो उक्त है जिसका नाम लिया पशुत्व देवत्व, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई योनियां हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देव से भिन्न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राक्षस भी तो देव भिन्न है ना, राक्षस किस योनि, पशु में आएंगे कि पक्षी में आएंगे कि मनुष्य में आएंगे कि देवता में आएंगे, राक्षस हैं असुर हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से राक्षस और असुर होने पर भी मन भगवान के चरण में लगता है तो राक्षस होने में कोई आपत्ति नहीं। प्रहलाद का शरीर राक्षस का शरीर है, हां प्रहलाद का शरीर किसका है, जन्म किस कुल में हुआ है, जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन मन भगवान में लग गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस कुल में पैदा हो तब जाकर भगवान की भक्ति करें, ये कुल वगैरह का कोई महत्व नहीं है, किस जाति में पैदा हो तब भगवान की भक्ति हो, शरीर से कुछ लेना देना नहीं भाई, पुरुष शरीर हो कि महिला शरीर हो शरीर से कोई मतलब नहीं है, पार्वती पुरुष शरीर वाली थी कि महिला शरीर वाली थी, हा? शरीर से कुछ लेना देना नहीं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, ये हैरान करते हैं प्राय करके, क्योंकि हम नेपाल में जहां मेरा आश्रम है गंडकी नदी के किनारे और शालिग्राम क्षेत्र है, वो गंडकी नदी में शालिग्राम आते हैं और वहां शालिग्राम मिलते हैं और गंडकी नदी का अंत वहीं होता है, मुक्तिनाथ दामोदर कुंड से निकल के जो गंडकी नदी आती है वह देवघाट जहां हमारा आश्रम है वहां तक गंडकी नदी उसका नाम रहता है। जब दूसरी बड़ी नदी के साथ वह मिलती है तो दो नदी मिलकर उसका तीसरा नाम नारायणी हो जाता है, गंडकी नाम खत्म हो जाता है, त्रिशूली और गंडकी दोनों मिलकर संगम में दोनों मिलने के बाद फिर उसके आगे नारायणी होती है, उसका नाम नारायणी होता है। और नारायणी कहां तक है तो बिहार में पटना के पास सोनपुर तक वह गंडकी नारायणी रहती है। और फिर वहां भागीरथी के साथ मिलने के बाद वो नारायणी नाम भी खत्म हो जाता है। तब फिर वहां नाम क्या होता है उसका, सभी नदी मिलकर सभी का नाम एक ही होता है भागीरथी। सारे नदी भागीरथी में मिलते हैं, अपना नाम और रूप समाप्त करके समुद्र में पहुंचते समय में सभी नदी का नाम क्या हो जाता है, भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा हो जाता है। कोई नदी अपने नाम और रूप में समुद्र में नहीं पहुंचते, शुरू से अंत तक एक ही नाम रहे ऐसा नदी केवल दुनिया में एक ही है। ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलते समय तो ब्रह्मपुत्र के रूप में मिलता है, लेकिन जहां उद्गम हुआ और तिब्बत और चाइना में उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, दूसरे नाम से वहां, और भारत में आने के बाद उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलता है। तो जहां उद्गम से समुद्र पर्यंत सतत प्रवाह के रूप में एक ही नाम और एक ही रूप में प्रवाहित होने वाली नदी भागीरथी गंगा, गोस्वा गोमुख से लेकर सागर तक उसका नाम भागीरथी ही रहता है, और सबका नाम बाधित हो जाते हैं। अलकनंदा नाम गंगा में मिलने के बाद बाधित हो गया, हे देख लो। जमुना का नाम इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा में मिलने के बाद जमुना बाधित, उसके आगे जमुना कई नाम नहीं है, प्रयाग तक ही जमुना है, सरस्वती प्रयाग तक ही है, वहां मिल जाने के बाद भागीरथी मिलने के बाद उसका नाम बाधित। आगे फिर गंगा, सब गंगा गंगा। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवापि अभिगच्छन्ति तथा नाम रूपम विहाय, गीता में कहा ना वो सब।

0: सदा त्वत् पाद अब्ज, पाद प्लस अब्ज माने अब्ज माने अप माने जल, उससे उत्पन्न हुआ वह क्या हुआ अब्ज, किसका नाम है कमल, तो पाद कमल चरण कमल पादाब्ज का अर्थ क्या हुआ पाद माने चरण, तो पादाब्ज यानी तुम्हारे आपके चरण कमल। सदा त्वत्पादाब्ज स्मरणम, आपके चरण कमल की स्मृति स्मरण, स्मरण का किससे होता है बोलो, स्मरण हृदय से होता है, स्मरण किससे हृदय से, चित्त से, हृदय में चार जो भाग हैं उनमें से जो चित्त है वह स्मृति चित्त में सन्निहित है। तो पादाब्ज स्मृति यानी हृदय, परमानंद लहरी उस हृदय में भगवान शिव की जो स्मृति है वही आनंद का तरंग बन जाता है। जिस समय शिव चरण का स्मरण होगा, स्मरण कर्ता को बिना विषय आनंद का अनुभव होगा, और जिस समय भगवान शिव का स्मरण न करके किसी और का स्मरण करोगे तो वह आनंद तरंग हृदय में, वह आनंद का तरंग नहीं होगा। किसी वियोगता व्यक्ति का स्मरण करोगे मरे हुएओं का, क्या हृदय में आनंद की अनुभूति होगी है? और किसी प्रियतमा का या प्रिय का स्मरण करोगे तो क्या वो आनंद की अनुभूति होगी, उत्तेजना बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति क्या होगा, विक्षेप बढ़ेगा और विक्षेप बढ़ेगा, व्यक्ति बेचैन हो जाएगा।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम .org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.

स्वनाम धन्य जगत वंदनीय पूज्य चरण खंडानी महाराज जी के श्री मुख से एक एक सूत्र वाक्य यह जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के विषय में प्रीति न हो वह हृदय हृदय नहीं पाषाण है, उसको हृदय नहीं कहना चाहिए, वो हृदय कमल नहीं बल्कि पाषाण है। और पाषाण जब चट्टाने टूटती हैं तब जाकर उसमें से झरना निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है। तो आज यहां पर भी वही लीला है जो पूज्य महाराज जी ने सूत्र पाठ किया। यदि आपका हृदय कमल है तब तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर को तांडव लीला करनी पड़ती है। जब तांडव लीला करते हैं तो पाषाण भी चकनाचूर होकर के वहां से फिर झरना निकलती है। और तांडव शब्द बनता भी है तड़ी आघाते धातु से, तड़ी आघाते है क्योंकि इदित धातु को नुम हो जाता है और आगे वृद्धि होकर तांडव बनता है। इसके पूर्व में भगवान ने पहले नीलकंठ लीला बतलाया। इस नीलकंठ लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप, इसके बाद में चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में अविद्या का अध्यारोप के बाद में काम दहन लीला। जैसे संसार में जब कोई आता है तो आने के बाद अविद्या का आरोप होता है। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन की घटना है। जब भी कोई जन्म लेता है तो वह निर्गुण निर्विशेष रूप से रहता है। दार्शनिक सिद्धांत भी है, उत्पन्नम क्षणम अगुणम निष्क्रियम तिष्ठति। और इस बात को न्यायिक नहीं बल्कि वेदांति मानते हैं कि प्रथम क्षण में सारे ज्ञान निर्गुण निष्क्रिय होते हैं, बाद में उसमें विशेषता आती है। जैसे कुछ देखेंगे तो यह कुछ है ऐसा होता है, पहले यह कुछ है, इसके बाद उसकी विशेषता मालूम पड़ती है कि यह घट है, पट है, या जो है स्वरूप है या कुरूप है। विशेषता द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में आती है। यहां पर भी जब कोई भी संसार में आता है तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय, बाद में अविद्या का आरोप कर दिया कि तुम यह हो वह हो, मनुष्यत्व का, ब्राह्मणत्व का, समाज का, धर्म का, तमाम आरोप करते हैं, यह अविद्या है। आरोप होने के बाद तदनुसार वह चेष्टा करता है। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुसार, क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुसार, यदि उसको कह दिया कि तुम इस्लाम हो तो उसके अनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी, प्रवृत्ति होगी। जब उसमें परेशान होता है तब जाकर भगवान काम दहन करते हैं, कामना का नाश। उपनिषद में आता है, वेद व्यास भगवान स्वयं ही कहते हैं, तृष्णा क्षयस्येते नार्हत षोडशीम कला। एते तृष्णा, ये जो हमारे तृष्णाएं हैं, कामनाएं, इनके क्षीण होने से अनंत सुख की अनुभूति होती है। इस संसार में इतना सुख है, उन सारे सुख को एक तरफ रख दो और तृष्णा क्षय को एक तरफ, वह पलड़ा भारी होगा। इतना सुख तृष्णा क्षय में है। उसी तृष्णा से जब प्राणी पीड़ित होते हैं तो भगवान शंकर ने काम का दहन यहाँ किया। अब काम दहन के बाद फिर आप क्या करते हैं लौकिक व्यवहारिक जगत में, जैसे किसी बच्चे की कामना है कि हमें साक्षर होना है, साक्षर होने के बाद वह अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो गया, नौकरी लग गई, धन कमाने लग गया, इसके बाद आप कहते हैं कि अब मुझे इसकी शादी ब्याह कर देना चाहिए। शादी ब्याह के पूर्व आप नृत्य करते हैं ना, नाच गा। ऐसे ही जब यहाँ काम दहन लीला हो गई तो भगवान शंकर इस 16वें श्लोक